0: अनुसरणीयम्। येन पश्चिमेशिया क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीय अपराध निरोधकेन प्रवर्तन निदेशालयेन महादेव आभासीय द्यूत तन्त्रांश सम्बद्धे कथित धन शोधन प्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतर तन्त्रांश वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं संचालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिक प्रतिष्ठानां चत्वारिंशदधिक नवशत कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां स्थावर जंगम सम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां संकटमयी वर्तते, येन राज्यस्य षट्सु अपि जनपदेषु सप्तत्रिंशत् सहस्रतोप्यधिकाः जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् संकटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशीव संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोनाम एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेब को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलो हर्ज में हामी आकाशवाणी गान्तोक को बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता समय यस बेला बिहानीको 7:05 भइरहेको छ र अब पालो भएको छ सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको। श्रोता कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। श्रोता कार्यक्रममा यो पहिलो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं चलचित्र 20 साल बादबाट गायक कलाकार हेमन्त कुमारको स्वरमा। यो चलचित्र सन् 1962 सालमा रिलीज भएको एउटा मनोवैज्ञानिक रहस्य वा सस्पेन्स चलचित्र हो जसको निर्देशक वीरेन नाग रहेका छन् भने निर्माता हेमन्त कुमार रहेका छन्। चलचित्रमा पात्र तथा कलाकारहरू क्रमैले विश्वजीत, वाहिदा रहमान, मदन पुरी अनि असित सेन रहेका छन् र यस चलचित्रका गीतहरूमा संगीत दिएका छन् हेमन्त कुमारले। श्रोता स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको यो पहिलो गीत।
3: जरा नजरों से कह दो जी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजमा अब सुनाइरहेका छौं यो अर्को गीत चलचित्र चाइना टाउनबाट कलाकार महम्मद रफीको स्वरमा। यो चलचित्र 1962 रिलीज भएको हिन्दी क्लासिक रोमान्टिक कमेडी थ्रिलर चलचित्र हो। चलचित्रका निर्माता र निर्देशक शक्ति सामन्तले गरेका छन् भने चलचित्रमा कलाकारहरू शमी कपूर, शकिला, हेलेन र मदन पुरीले मुख्य रूपमा अभिनय गरेका छन्। चलचित्रका गीतहरूमा संगीत भरेका छन् रवि शंकरले। श्रोता स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको यो अर्को प्रस्तुति।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
3: SME, innovation, labor, environment and gender.
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
5: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
6: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
2: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में यह करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रूपये का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रूपये से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवामा सुनाइरहेका छौं नेपाली आधुनिक गीतहरूको कार्यक्रम गीतिमाला। हजुर श्रोता, मानिसको जीवनमा संगीतको आफ्नै विशेष स्थान हुन्छ। कहिले सुखी खुशीका पलहरूमा साथ दिने, कहिले दुःख र पीड़ालाई भुलाउने त कहिले पुराना सम्झनाहरूलाई फेरि ताजा बनाउने माध्यम हो गीत संगीत। र श्रोता, अब कार्यक्रमको यो समय भएको छ। अन्तिम गीतको प्रस्तुत गरिरहेका छौ गायक रिको लामाको स्वरमा मनमोहक प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस्।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

न कागज की कश्ती, न चिट्ठी की बात है, ये तो सीधे दिल से दिल की मुलाकात है। तो ईमेल खोलिए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, साथ ही चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आने दीजिए। खुल चुका है दिल का मेल बॉक्स, अब अपनी फरमाइशों को जरा पंख लगाकर उड़ने दीजिए। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग इन योर फेवरेट शो, नाम है जिसका दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज हूं आपकी डाकिया। बस फर्क ये है कि आपके ही खत आपको ही पढ़कर सुनाऊंगी और प्ले करूंगी आपकी पसंद के खूबसूरत ट्रैक्स भी। तो देर आपको करनी है नहीं, जल्दी से लिख भेजना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। साथ ही कुछ शेर व शायरी हो जाए तो बस बात ही बन जाए। FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर करना है ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं, तो नंबर है 9868886853। और फिलहाल चलिए पूरी की जाए आज की पहली फरमाइश, जो आई है हमारे पास खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना की ओर से। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप भी यही गाना सुनना चाहते हैं।

0: और मेरे सामने हैं आपके प्यारे प्यारे ईमेल्स जिसमें आप ढेर सारा प्यार लिख कर भेज रहे हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने भेजा है मैसेज बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। और साथ ही शामिल हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी। और एक छोटी सी प्यारी सी शिकायत भी है कि कल आपका संदेश शामिल नहीं हो पाया था। उम्मीद है आज आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। अगला मैसेज शामिल करते हैं मोताला महाराष्ट्र से जो आया है विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार ने भेजा है। लिखते हैं कि दिल में मेरे आज क्या है, ये लफ्जों में कहां बयां होगा, जिसने आंखों को पढ़ लिया वही मेरा राज समझ पाएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी की है इन्होंने, जिसे कोशिश करेंगे हम पूरा करने की बिल्कुल। और अभी फिलहाल शामिल कर रहे हैं अगला मैसेज जो कि भेजा है सीताराम कांगड़ा जी ने एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा जी, माफ कीजिएगा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट इस मैसेज में शामिल हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई अच्छी सी बात अगर आप लिखकर भेजे ना, तो पढ़ने का मजा और कार्यक्रम में शामिल करने का मजा दोगुना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, अगला मैसेज हम खोल लेते हैं नवाब अहमद साहब का। और इन्होंने भी शायरी लिखकर भेजी है, बड़ी खूबसूरत। लिखा है कि लिखकर जो मेरा नाम जमी पर मिटा दिया, लिखकर जो मेरा नाम जमी पर मिटा दिया, उनका था खेल खाक में हमको मिला दिया। उफ, दुख भरी दर्द भरी शायरी है। शबाना भारती, अरहान अहमद और सूफिया नवाब इनके साथ इस मैसेज में है शामिल। बल्ली मारन से आया है ये मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। अगला मैसेज आया है संदीप मक्कड़ जी की ओर से, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर से लिखा है और सिर्फ नाम लिखा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, अगला मैसेज शामिल करते हैं जो कि आया है हमारे पास परवेज आलम जी की ओर से, बलमी सिरसिया, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार से लिख रहे हैं और किसी भी गीत में नाम शामिल करवाना चाहते हैं। तो लीजिए, आपका नाम हमने शामिल कर लिया। और साथ ही अब अगले गीत की भी बारी आ गई है। बहुत ही प्यारा गीत अब आप सुनने जा रहे हैं लता जी और मुकेश जी की आवाज में, जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी काले गांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद सानवी और कल्पना देशमुख ने।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जो दिल और नजर से उतर गए, क्या फर्क पड़ता है वो किधर गए। बदल जाती है जिंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारा तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज लिखकर भेजा है सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार

के सभी सदस्यों ने और इनकी इस बात से मुझे भी गुलजार साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। तो अर्ज किया है कि तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। और इसी के साथ एक और मैसेज आया है मनाली हिमाचल प्रदेश से, उनको भी हमसे वैसी हो मोहब्बत जरूरी तो नहीं, एक सी दोनों की हो हालत जरूरी तो नहीं, दिल की चाहत तो कई ख्वाब जगा देती है, हाँ मगर साथ में किस्मत भी हो जरूरी तो नहीं, मेरी तन्हाइयां करती हैं जिन्हें याद सदा, उनको भी हमारी जरूरत हो जरूरी तो नहीं, मुस्कुराने से भी होता है बयां गमे दिल, इस मासूम को रोने की भी आदत हो जरूरी तो नहीं।

एक और खूबसूरत मैसेज इसी के साथ। ओरी सखी मत पूछ नाम उनका, वो तो मेरी हर सांस में बसते हैं, इस सुहाने मौसम के फुहारों में बस वही मेरे दिल में हंसते हैं। जाकर कह दे कोई उनसे इतना, ये घटाएं अब हमसे झेली नहीं जाती, बिजली चमके तो दिल कांप उठता है, बिन उनके अब ये रातें काटी नहीं जाती। मेहंदी का रंग भी अब फीका लगे, ये सावन का झूला भी सूना पड़ा है, कह दो उनसे कि अब लौट आए, कोई चौखट पर आंखें बिछाए खड़ा है। और ये खूबसूरत सा मैसेज किसने लिखकर भेजा है? बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी ने लिखा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। साथ ही शामिल है रामदेवरा से दिनेश चौहान, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। चलिए और अगला मैसेज शामिल करते हैं हम। आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने भी लिख दिया है मैसेज, शेरवानी स्कूल गंज टुडवारा उत्तर प्रदेश से। चलिए सुनते हैं अगला गाना, और बहुत ही प्यारा गाना है जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या सविता भाकरे जी की ओर से, शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से।

न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दें यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने लिखकर भेजी है ये अच्छी सी बड़ी गहरी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। और अगला मैसेज आया है विकासपुरी से, एसके खन्ना साहब ने लिखा है कि सुख का आनंद और दुख का समाधान ही जिंदगी है। बिल्कुल सही बात है। और चलिए अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, हेमलता जी का। लालगिरी गोस्वामी, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इस मैसेज में शामिल हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लिख रहे हैं और किसी भी अच्छे से गीत में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। अगला मैसेज आया है कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश की ओर से उत्तम नगर दिल्ली से भेजा है मैसेज, साथ ही लिखकर भेजा है अपना फरमाइशी गीत भी। चलिए अब ईमेल का रुख कर लेते हैं, तो यहां भी आपके मैसेजेस का अंबार लगा हुआ है, जिनमें से अब अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। ज्यादातर मैसेज में पहले ही शामिल कर चुकी हूं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यहां पर दोहराना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज एक ही मैसेज भेजें। उससे क्या होता है ना कि कई सारे मैसेजेस बीच में कहीं खो जाते हैं जो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते और फिर आप हमसे हो जाते हैं नाराज। तो मिल गया है एक मैसेज गुन्नौर से, आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली शामिल हैं इस मैसेज में और ये भी किसी अच्छे से गीत में शामिल होना चाहते हैं। अभी अभी आया है आफताब अंसारी जी का भी मैसेज, शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से लिखा है रियाज मोहम्मद कैफ लुबना। आप देखिए ये मैसेज भी पहले ही शामिल हो चुका है, तो ऐसा गजब मत कीजिए। जो लोग ईमानदारी से एक ही मैसेज भेज रहे हैं उनके मैसेज हम पढ़ पाएं, इतना हमें वक्त जरूर दीजिए। मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता ने भेजा है मैसेज, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, बिरडी नाना जी लाम से जगह का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं, धर्मेंद्र छीपा जी का, भोपालगढ़ राजस्थान से लिख रहे हैं। ईशान, कपिल और पूजा इसमें शामिल है और नाराजगी भी शामिल है भाई। लिख रहे हैं कि ना तो फरमाइश का गीत बजता है ना मैसेज शामिल होता है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही बेहतरीन मैसेज भेज देते हैं पर आप उसे शामिल नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है धर्मेंद्र जी, बस कोशिश हमारी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस शामिल किए जाएं। लेकिन क्या होता है ना, जब एक ही नाम से कई सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो फिर खो जाते हैं आपके मैसेज भी। कलम में जितना जोर है जुदाई की बदौलत है, मिलन के बाद तो लिखने वाले लिखना ही छोड़ देते हैं। सरफरुद्दीन

अंसारी ने लिखा है ये मैसेज, कहां से लिखा है ये लिखना शायद भूल गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला मैसेज हम शामिल करते हैं मधु किरण जी का, और नाम के अलावा आपने भी कुछ नहीं लिखा, ये तो गलत बात है। चलिए अगला मैसेज अजीत जी का मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने की है फरमाइश। वीर मगाम गुजरात से लिख रहे हैं, अजीत भावसार इनका नाम है और प्रमिला भावसार इनके साथ हैं शामिल। तो चलिए इसी के साथ मेरी नजर चली गई है अब घड़ी पर, जो कि बहुत तेजी से भाग रही है, तो इशारा मैं समझ रही हूं घड़ी का कि मुझे अब आपको सुनाना होगा आज का दिल का मेलबॉक्स की फरमाइश की लिस्ट से आखिरी गीत। लेकिन उससे पहले चलिए एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। ताज मोहम्मद जी ने किया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं। तो चलिए अगला मैसेज जो अब आप माफ कीजिए अगला जो गाना आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म लोफर से, लता जी की मीठी आवाज हम सब सुनने वाले हैं। कोहका भिलाई से आई है इसकी फरमाइश, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल ने की है फरमाइश। धमधा ग्राम सुखरी कला से भी आई है इसकी फरमाइश, अमित जंघेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि ने कहा है ये गाना सुनाने के लिए।

और आप कोशिश मत कीजिएगा एफएम गोल्ड को छोड़कर कहीं भी जाने की, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी अब ठीक 11:10 पर। प्रोग्राम होगा तस्वीर और इस गाने के उस पार आप जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर हिंदी और अंग्रेजी में।

0: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: इनोवेशन, लेबर रिक्वायरमेंट एंड जेंडर।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, ग्लेनोकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ ही मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए यह रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

तो स्वागतम अस्सलामुअलैकुम एंड हैव अ ग्रैंड वेलकम बाय मी आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11 और 20 सेकेंड्स। एंड एज यू ऑलरेडी नो ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। और आज तस्वीर में आप मेरे साथ चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हर तरफ हरियाली से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक सब कुछ है, जिसे आप देखना चाहेंगे और करीब से महसूस जरूर करना चाहेंगे। एक ऐसे ऐतिहासिक शहर की होगी सैर जो सूर वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और तो और देश की मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड भी इस शहर से होकर गुजरती है। तो उम्मीद है कि अब तक आप पहचान ही गए होंगे कि बिहार चल रहे हैं हम, जहां सहसराम यानी सासाराम पहुंचकर रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साथ ही एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने भी, जैसे कि ये

जी हाँ, बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत जगह है सासाराम, और उतने ही प्यारे हैं यहाँ के लोग, साथ ही उनकी बोली के तो क्या ही कहने। बिहार साउथ वेस्ट पार्ट में मौजूद, बिहार के साउथ वेस्ट पार्ट में मौजूद रोहतास जिले के मुख्यालय और प्रमुख शहर की बात हो रही है आज, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां मैं यानी नाज अब आपको बताऊंगी कि किस मौसम में बनाना चाहिए आपको सासाराम का प्लान। अक्टूबर से मार्च के बीच यानी सर्दियों का मौसम बेस्ट है यहां आने के लिए, क्योंकि इस दौरान सुहाने और ठंडे मौसम के बीच आपको घूमने में आसानी होगी। वाटरफॉल्स की खूबसूरती का लेना है असली आनंद, तो चुनिए अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय, यानी मॉनसून के वक्त, जब इन झरनों में पानी की कमी नहीं होती और सासाराम को आप कर लेते हैं अच्छे से एक्सप्लोर।

चले चलते हैं, चलिए हम भी सासाराम के और नजदीक और बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ तक पहुँचना कैसे है। बाय एयर आने के लिए आप फ्लाइट लेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसकी दूरी सासाराम से सिर्फ 140 किलोमीटर है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा सासाराम से। बाय ट्रेन अगर आप प्लान बनाएं तो टिकट बुक कीजिएगा सीधा सासाराम जंक्शन का ही, जो कि नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड रोड पर मौजूद है। बाय रोड अगर जाना चाहते हैं तो ग्रैंड ट्रंक रोड का ही साथ पकड़ेंगे, जो कि अब NH-19 पर मौजूद है। और जो कि सासाराम को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ती भी है, तो फिर चलिए ठंडी हवा के साथ और काली घटा के संग हम भी चल पड़ते हैं सासाराम के और नजदीक, और साथ में एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक।

0: हर तरफ फैली हरियाली, खेतों में लहलहाता धान है। यहाँ का हर किसान इस माटी का अभिमान है। सादगी, मोहब्बत और अपनापन, बस यही यहाँ की जागीर है। सासाराम की यही तो सबसे सुंदर तस्वीर है। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सासाराम और उसके आसपास की भूमि बेहद उपजाऊ है। खासतौर पर चावल की खेती यहाँ भरपूर होती है और यही वजह है कि ये इलाका बिहार में धान का कटोरा भी कहा जाता है। मूल रूप से सासाराम को शाह सराय यानी राजा का स्थान कहा जाता है क्योंकि ये अफगान राजा शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है जिनका दिल्ली पर शासन हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में ये शहर सूर वंश की राजधानी था और यही वजह है कि जो सबसे मशहूर जगह है यहाँ की वो है शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसकी हर खासियत को जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये अगला ट्रैक।
1: दिलों का न पूछो सनम आप।

शेरशाह सूरी के मकबरे की बात कर रहे थे हम इस गाने से पहले, जो कि सासाराम की एक तरह से पहचान है। एक बड़े सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी ही इस मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। हालांकि ये निर्माण कार्य उनकी मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद पूरा हो पाया था। कुल मिलाकर इस मकबरे में 24 कब्रें हैं, जिनमें शेरशाह सूरी की कब्र ठीक बीच में मौजूद है। हिंद इस्लामी वास्तुकला इस मकबरे को देश की सबसे सुंदर स्मारकों में से एक बनाती है, जो कि 8 कोणों या भुजाओं वाला भी आप इसे कह सकते हैं। और कुल मिलाकर इसमें 3 मंजिलें हैं। 122 फीट ऊंचे इस मकबरे तक पहुंचने के लिए लगभग 350 फीट लंबा एक पुल है, जिस पर चलते हुए आप वो यादें बुनते जाते हैं जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां निकले हैं आप सासाराम की सैर पर, तो यहां मौजूद कैमूर हिल्स जाना बिल्कुल वैसा है जैसे सोने पर सुहागा। जी हां, लगभग 500 किलोमीटर लंबी विंध्य की पहाड़ियों पर फैला ये इलाका जाना जाता है कैमूर हिल्स के नाम से, जिसका एक हिस्सा रोहतास और सासाराम में भी आता है। यहां से होकर बहने वाली सरपीली नदियां इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। और यहीं सासाराम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको दर्शन होते हैं मां तारा चंडी के। देश के 52 शक्तिपीठों में से ये सबसे पुराना शक्तिपीठ है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान खास भीड़ देखने को मिलती है। और इसके बाद यही यानी कैमूर हिल्स के पास ही सोन नदी पर बना इंद्रपुरी डैम भी देखने लायक है। और आपको बता दूं कि ये दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज बांध है, जो बहती नदी के शोर के बीच नेचर की खूबसूरती को निहारने का एक बेहतरीन मौका आपको देता है।
1: दुई सय 13.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। उसको साथी श्रोताहरूले हामीलाई

0: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नारी संसार कार्यक्रम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: कार्यक्रम अघि बढाउँदै श्रोता आउनुहोस् सुनौ केही आधुनिक युगल गीत, र सर्वप्रथम हामी सुनाउँदैछौ पवन राई नामदुङ अनि स्नेहा श्रीको आवाजमा यो युगल गीत।

0: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो केही नेपाली आधुनिक युगल गीत। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। उसको साथै श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्जमा पनि सुनिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौ हिन्दी भाषा पाठको कार्यक्रम।
1: नमस्ते बच्चो, आज हम फिर से हिन्दी भाषा अध्ययन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पहले हमने लिंग के नियमों का अध्ययन किया। आज के कार्यक्रम में हम लिंग के प्रयोग कैसे किए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार करते हैं, इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्ययन, लिंग के प्रयोग।
2: अब मैं चाहूंगी कि स्त्रीलिंग के इन पांचों नियमों को आप दोनों एक बार मुझे सुनाइए।
3: ठीक है दीदी। स्त्रीलिंग के नियम है, एक, इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बेटी, रोटी, नदी, चिट्ठी आदि। दो, भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू आदि। तीन, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती आदि। चार, जिन शब्दों में ता, आई, आवट, इया, आहट प्रत्यय लगे हो वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सुंदरता, बुराई, सजावट, लुटिया, घबराहट आदि। और पांच, प्राय शस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे बंदूक, तलवार, तोप आदि।
2: शाबाश बच्चों, तो हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ नियम जाना है, परंतु इतना काफी नहीं है। और भी कुछ नियम है लिंग संबंधी जिसे जानना अनिवार्य है। जैसे कि कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग होती है। इनमें पुल्लिंग कौन सा है या स्त्रीलिंग, इनमें भेद और पहचान के लिए पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा शब्द लगा देते हैं। जैसे नर उल्लू, मादा उल्लू, नर कोयल, मादा कोयल, नर गैड़ा, मादा गैड़ा। इस तरह हम यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है पहचान जाएंगे। तो बताइए, जिन प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती है, उनके भेद या पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूरेजा आप बताइए।
4: जिन प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती है, उनके वेद या पहचान के लिए हमें पुल्लिंग के आगे नर और स्त्रीलिंग के आगे मादा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे

0: नर उल्लू, मादा उल्लू, नर कोयल, मादा कोयल आदि।
1: बहुत खूब युरजा, अब हम कुछ ऐसे शब्द जानेंगे जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना है मछली जल का राजा है कहते हुए?
2: नहीं दीदी, हमने तो मछली जल की रानी है कहते हुए सुना है।
1: बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने। मछली को हरदम जल की रानी कहा जाता है क्योंकि मछली नित्य स्त्रीलिंग है। उसी तरह छिपकली, मक्खी, तितली आदि भी नित्य स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं बताइए?
0: कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मछली, मक्खी, छिपकली, तितली आदि।
1: वैसे ही कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे खटमल, बिच्छू, मगर, सारस आदि। तो बच्चों बताइए, नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं?
0: कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मगर, सारस, खटमल, बिच्छू आदि।
1: वेरी गुड बच्चों, अब हम कुछ ऐसे शब्द जानेंगे जो एक ही शब्द होगा परंतु उसे पुल्लिंग जाति के लिए प्रयुक्त होने पर पुल्लिंग और वही शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, सर्जन आदि। इसका उदाहरण है, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस वाक्य में प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं लिखने से यह जानकारी प्राप्त होता है कि आने वाले प्रधानमंत्री पुरुष है और प्रधानमंत्री पुल्लिंग माने जाते हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, प्रधानमंत्री विदेश जा रही है। इस वाक्य में प्रधानमंत्री के साथ जा रही है जुड़ने से यहाँ प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो बच्चों, अब बताइए कि एक ही शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भेद कैसे करेंगे?
0: कुछ शब्द

0: से डॉक्टर आ रहे हैं, अर्थात पुरुष डॉक्टर आ रहे हैं, तो यह पुलिंग हुआ। उसी तरह डॉक्टर आ रही है। इस वाक्य में स्त्री डॉक्टर आने का संकेत है, इसलिए इस वाक्य में डॉक्टर स्त्रीलिंग है।
1: शाबाश बच्चों, अब आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम पता चल गया है ना?
0: जी दीदी।
1: तो अब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, इसका कुछ सामान्य नियम है वह जानेंगे। हमने शब्दों के अंत में प्रत्यय शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाने का नियम पढ़ा है, तो वही प्रत्यय कहाँ और कैसे प्रयोग करके स्त्रीलिंग में बदलेंगे यह जानेंगे। सबसे पहले आ प्रत्यय को पुल्लिंग शब्द के साथ जोड़कर स्त्रीलिंग में बदलेंगे, जैसे पुल्लिंग बाल, स्त्रीलिंग बाला, ठीक है ना? फिर प्रिय प्रिया, पूज्य पूज्या, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, भौदीय भौदीया, महोदय महोदया, छात्र छात्रा, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा। अंत में प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जाता है इस तरह। अब मैं पुल्लिंग कहूंगी, आप लोग आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बताना, ठीक है?
0: ठीक है दीदी।
1: जैसे बाल, आप लोग स्त्रीलिंग बताइए।
0: बाला।
1: प्रिया।
0: प्रिया।
1: पूज्य।
0: पूज्या।
1: शिष्य।
0: शिष्या।
1: आचार्य।
0: आचार्या।
1: भौदीय।
0: भौदीया।
1: महोदय।
0: महोदया।
1: छात्र।
0: छात्रा।
1: सुत।
0: सुता।
1: वृद्ध।
0: वृद्धा।
1: शाबाश बच्चों, अब

0: बड़ी ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। कबूतर
1: कबूतरी,
0: देव
1: देवी,
0: पहाड़
1: पहाड़ी,
0: दास
1: दासी,
0: घोड़ा
1: घोड़ी,
0: बकरा
1: बकरी,
0: बेटा
1: बेटी,
0: चाचा
1: चाची,
0: ब्राह्मण
1: ब्राह्मणी,
0: लड़का
1: लड़की।
0: अब मैं एक बार फिर से पुल्लिंग शब्द कहूंगी और आप लोग बड़ी ईकर प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बताना, ठीक है?
1: ठीक है दीदी।
0: फिर कबूतर
1: कबूतरी,
0: देव
1: देवी,
0: पहाड़
1: पहाड़ी,
0: दास
1: दासी,
0: घोड़ा
1: घोड़ी,
0: बकरा
1: बकरी,
0: बेटा
1: बेटी,
0: चाचा
1: चाची,
0: ब्राह्मण
1: ब्राह्मणी,
0: लड़का
1: लड़की।
0: अब ईया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। जैसे लोटा को लोटिया, बेटा बिटिया। अब ईया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। जैसे लोटा लुटिया, बेटा बिटिया। इसी तरह ईया प्रत्यय जोड़कर यूरेजा आप मुझे स्त्रीलिंग बताइए। बूढ़ा
1: बुढ़िया,
0: चूहा
1: चूहिया,
0: डिब्बा
1: डिब्बिया,
0: कुत्ता
1: कुतिया,
0: बंदर
1: बंदरिया,
0: गुड्डा
1: गुड़िया,
0: बछड़ा
1: बछिया,
0: चीड़ा
1: चिड़िया।
0: बहुत अच्छा यूरेजा। अब हम नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाएंगे। मैं पहले पुल्लिंग शब्द कहूंगी और नौजिला आप नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बताइए। जैसे चोर
1: चोरनी,
0: मोर
1: मोरनी,
0: ऊंट
1: ऊटनी,
0: शेर
1: शेरनी,
0: जाट
1: जाटनी,
0: भील
1: भीलनी,
0: सिंहा
1: सिंहनी,
0: सरदार
1: सरदारनी,
0: मास्टर
1: मास्टरनी।
0: बहुत अच्छा नौजिला। अब आप दोनों इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाइए। जैसे मालिक का मालकिन इन प्रत्यय जोड़ा है तो मालकिन हुआ। मालिक में इन प्रत्यय जोड़कर मालकिन बनाया। इसी तरह आप लोग बनाना, ठीक है? जैसे नाग
1: नागिन,
0: माली
1: मालिन,
0: पुजारी
1: पुजारिन,
0: ग्वाला
1: ग्वालिन,
0: ग्वालिन बोलो
1: ग्वालिन,
0: नाई
1: नाइन,
0: जालाहा
1: जुलाहिन,
0: बाघ
1: बाघिन,
0: धोबी
1: धोबिन,
0: तेली
1: तेलिन।
0: फिर बनू ल नाग
1: नागिन,
0: माली
1: मालिन,
0: पुजारी
1: पुजारिन,
0: ग्वाला
1: ग्वालिन,
0: नाई
1: नाइन,
0: जालाहा
1: जुलाही,
0: बाघ
1: बाघिन,
0: धोबी
1: धोबिन,
0: तेली
1: तेलिन।
0: वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है समझ गए हैं आप लोग, है ना?
1: समझ गए हैं दीदी।
0: तो इसी तरह अब आप लोग इनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाइएगा। जैसे हंस हंसिनी, इसी तरह बताइए। हाथी
1: हाथिनी,
0: स्वामी
1: स्वामिनी,
0: तपस्वी
1: तपस्विनी,
0: हितकारी
1: हितकारिणी,
0: वनवासी
1: वनवासिनी।
0: शाबाश बच्चों। अब आ इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे ठाकुर का होता है ठाकुरा इन। अब मैं पुल्लिंग शब्द दूंगी, आप लोग आ इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाइए। पंडित
1: पंडिताइन,
0: चौधरी
1: चौधराइन,
0: लाला
1: ललाइन,
0: पंडा
1: पंडाइन।
0: इसी तरह आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाइए। यूरेजा आप बताना। उदाहरण है राजपूत राजपूतानी, जेठ
1: जेठानी,
0: देवर
1: देवरानी,
0: सेठ
1: सेठानी,
0: मेहतर
1: मेहतरानी,
0: नौकर
1: नौकरानी।
0: शाबाश यूरेजा। अब आगे जो प्रत्यय हम पढ़ेंगे उसमें पुल्लिंग शब्द के अंत में जो अप प्रत्यय लगा है उसे ईका प्रत्यय में बदलकर स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे पुल्लिंग शब्द नायक के अंत में अक है, इसे हम ईका प्रत्यय में बदलकर नायिका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो इसी प्रकार बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका, सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका होता है। अब नौरजिला आप बताइए, नायक का?
1: नायक का नायिका।
0: बहुत अच्छा। इसी प्रकार मान और वान को मति और वती में बदलकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बुद्धिमान है तो मान को मति बनाकर स्त्रीलिंग में बुद्धिमती बनाएंगे। गुणवान पुल्लिंग में वान है तो उसे वती में बदलकर स्त्रीलिंग बनाएंगे, गुणवती। तो अब आप दोनों बताइए, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है?
1: आयुष्मती।
0: धनवान का?
1: धनवती।
0: शक्तिमान का?
1: शक्तिमती।
0: रूपवान का?
1: रूपवती।
0: श्रीमान का?
1: श्रीमती।
0: पुत्रवान का?
1: पुत्रवती।
0: एकदमै राम्रो नानीहरू। यसरी नै तालाई त्रिमा परिवर्तन गरेर स्त्रीलिङ्ग बनाइन्छ, जस्तै नेता, नेत्री। अब म ता लगाएर पुल्लिङ्ग शब्द भन्छु, तपाईहरू त्री लगाएर स्त्रीलिङ्ग बनाउनुहोस् है। नेता,
1: नेत्री।
0: अभिनेता,
1: अभिनेत्री।
0: दाता,
1: दात्री।
0: कर्ता,
1: कर्त्री।
0: धाता,
1: धात्री।
0: प्रबंधक, कर्ता,
1: प्रबंधक, कर्त्री।
0: शाबाश बच्चों। अब हम कुछ विशेष शब्दों का स्त्रीलिंग में कैसा रूप होते हैं उसे दिखाते हैं। जैसे वर का वधु, विद्वान विदुषी, कवि कवयित्री, वीर वीरंगना, नर माधा, साधु साध्वी, विधुर विधवा, ससुर सास, पिता माता, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती। यह ऐसे विशेष शब्द है जिसका कोई नियम नहीं होता है। इनके इसी रूप को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में स्वीकारा जाता है। तो बच्चों एक बार मैं फिर पुल्लिंग शब्द दोहराऊंगी और आप लोग स्त्रीलिंग बताना, ठीक है?
1: ठीक है दीदी।
0: ओके। वर का?
1: वधु।
0: फिर बोलिए। वर का?
1: वधु।
0: विद्वान?
1: विदुषी।
0: कवि?
1: कवियत्री।
0: वीर?
1: वीरंगन।
0: वीरंगना?
1: वीरंगना।
0: नर?
1: मादा।
0: साधु?
1: साध्वी।
0: साध्वी,
1: साध्वी।
0: विदुर?
1: विधवा।
0: ससुर?
1: सास।
0: पिता?
1: माता।
0: पुरुष?
1: स्त्री।
0: सम्राट?
1: सम्राज्ञी।
0: युवक?
1: युवती।
0: युवती,
1: युवती।
0: वेरी गुड, अति राम्रो। अब हम वाक्य स्तर पर लिंग परिवर्तन करके दिखाते हैं। जैसे साधु उपदेश दे रहे हैं, साध्वी उपदेश दे रही है। अभिनेता हंस रहा है, अभिनेत्री हंस रही है। तो बच्चों आज हमने लिंग के प्रयोग कैसे किया जाता है वह जानकारी लिया है। अब हमारा समय भी समाप्त हो गया है। हमारा आज का यहाँ हिंदी अध्ययन कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ हमारे बच्चों को यह अध्ययन समझ में आ गया हो।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं, प्रतिदिन

0: आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद
1: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
1: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और

0: नीलनदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
1: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
0: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
0: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
0: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
0: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
0: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
0: जी।
1: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
0: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
0: जी।
1: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
0: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक,
5: रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी,
5: आज ना किसी ने गीत का

0: और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
1: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
2: नाना जी,
1: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
0: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
3: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
1: ये लो, नानी जी भी आ गई।
4: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
3: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
4: हाँ वो तो है।
0: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
4: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
3: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
0: कहाँ से आया है
3: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
0: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
3: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
1: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
3: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
0: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
3: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
0: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
3: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
0: अच्छा नाना जी।
3: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
0: अच्छा।
3: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
0: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
3: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
4: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
3: हाँ।
4: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
3: बिल्कुल।
4: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
0: अच्छा।
4: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
0: अच्छी अर्थव्यवस्था।
4: हाँ।
3: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
3: वही इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
0: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
1: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी मां के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है। ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?

0: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
1: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
2: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
0: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
2: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब हामी सम्प्रसार गर्दैछौ विविध भारती सेवा।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे और आपका अंदाजा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर। बिल्कुल हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है। सचमुच सुरीले सफर में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां पर आदत की बात की गई वहां सुबह सूरज के उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं। दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए अपनी जिंदगियों में और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीजों का परेशानियों का सबब बनता है। तो जरूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहां तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा जरूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी जिंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी जिंदगी में दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं लेकिन ये गीत यहां पर एक शब्द छुपा है

हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए, उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक चीजें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी जिंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीजें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीजों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी जिंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतजार कर रही हूं। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जैसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज आवाज में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाजों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यह भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं, वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

0: enterprises. The double contribution convention will reinforce the mobility and competitiveness of the Indian professionals in the United Kingdom. Mr. Modi noted that this moment reflects the trust between India-UK democracies and their resolve to build a forward-looking partnership driven by trade, technology, investment and innovation. The Prime Minister highlighted that India and the UK will continue working together for shared prosperity. Our correspondent tells us more on the agreement which grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market.
1: The agreement between India and UK marks a new phase in the country's economic diplomacy. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. The agreement will create rural employment opportunities across farmers, producer organizations, food processing units and logistics. The agreement on social security relating to social security contribution also came into force along with CETA. It exempts Indian workers and employers from making dual social security contributions in the United Kingdom during temporary assignments. The period of exemption has been increased from 3 years to 5 years. With Dipendra Kumar, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
0: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Comprehensive Economic and Trade Agreement is opening new avenues for trade, investment and innovation. In an article in an English daily, Mr. Goyal said the agreement will create unique opportunities for the businesses while further accelerating Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047. He noted that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Further, he highlighted that it will not only benefit just Indian exporters, but also the white-collar service sector professionals across skill sets. Mr. Goyal expressed optimism that more than 75,000 Indian professionals and over 900 companies are expected to be benefited from it. He also assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by replacing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. Defence Minister Rajnath Singh has said the India-UK trade agreement marks a significant step in strengthening India's economic growth and global partnerships. Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi has said the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, is a landmark step that strengthens the country's economic interests, safeguarding the farmers and agricultural sector. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of FICCI, Anand Swarup, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth. Mr. Swarup congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. He said it will also help enhance the competitiveness of Indian industry.
2: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom.
0: ASSOCHAM President Nirmal Kumar Minda said the agreement marks a historic milestone in India's FTA journey, bringing together two of the world's oldest democracies through a comprehensive free trade partnership. He said the agreement is expected to significantly benefit textiles, leather, marine products, gems and jewellery, engineering goods and chemical sectors. Chairman Trade Promotion Council of India Mohit Singla said the landmark agreement opens a new chapter of opportunity for the Indian exporters. The 11th anniversary of the Skill India mission is being observed today. Prime Minister Narendra Modi had launched the mission in 2015 with the aim to equip youth with industry-relevant skills for employment, entrepreneurship and sustainable livelihoods. More from our correspondent.
1: Skill India has empowered millions of youth with industry-relevant skills, creating opportunities for employment, entrepreneurship and nation-building. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has empowered more than 6 crore youth through its various schemes. Over 1 crore youth are getting trained every year under the Skill India mission. Under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 1 crore 65 lakh youth have been trained. As India moves towards Viksit Bharat by 2047, investing in skills remain key to unlocking every citizen's potential and driving inclusive, sustainable growth. With Dipendra Kumar, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: The World Youth Skills Day is being observed today. It is celebrated every year on the 15th of July after the United Nations General Assembly's declaration in 2014. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu has called for the adoption of the latest techniques in Ayurveda for the greater good of society. Addressing the inaugural function of Saushrutam 2026 in New Delhi today, the President said that the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. She expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards.
3: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा.
0: The Union Home Ministry has designated a new special court for the trial of offences investigated by the National Investigation Agency NIA and other scheduled offences under the NIA Act across Maharashtra. The ministry has taken the decision after consultation with the Chief Justice of the Bombay High Court and the Government of Maharashtra. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that times are changing rapidly and people now expect responsive, transparent and accountable governance along with responsible public representatives. He said legislative institutions play a vital role in ensuring good governance through transparency and accountability. Mr. Birla was addressing the inaugural session of the Vidhai Gaurav Yatra organized in Jaipur to mark the 75th anniversary of the Rajasthan Legislative Assembly. India has warned that people's confidence in the United Nations is declining due to the failure to reform the UN Security Council and effectively address global conflicts. Speaking at a ministerial roundtable on making multilateralism fit for the future at the UN, India's permanent representative P. Harish said the Security Council has failed to intervene meaningfully in the ongoing conflicts, raising questions about its ability to uphold international peace and security.
4: The Security Council has been ineffective in putting an end to human suffering among the affected populations. The foundational principle for the establishment of the United Nations, maintenance of international peace and security, has therefore been called to question. The underlying reason for inadequacies of the Security Council is evident. An 80-year-old architecture designed for the 1940s is ill-equipped to address contemporary challenges. As a collective, the UN has not been able to move the needle on reforming the Security Council.
0: Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, entered the 36th consecutive day today, with thousands gathering in Rawalkot amid growing unrest. Addressing the rally, Joint Awami Action Committee leader Sardar Aman Khan accused Pakistan of forcibly occupying the region. He said POJK is an occupied territory and not a disputed territory. He vowed that the movement would continue until victory, even if protesters had to sacrifice their lives. The rally witnessed strong anti-Pakistan slogans, with demonstrators pledging to continue their agitation. Meanwhile, the United Kashmir People's National Party strongly condemned the reported killing of 6 civilians by Pakistani security forces during clashes in Rawalkot. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. Furthermore, heatwave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak river has crossed the danger mark by 2 centimetres. More from our correspondent.
5: As the water level of the Gandak River continues to rise, 1,83,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 2,21,000 cubic. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
6: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन. समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया. भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान. आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा. ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना. अब समाचार विस्तार से. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है. श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए यह बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा. साथ ही कई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
7: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉ राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
8: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
6: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉ सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परम्परा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
6: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
6: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
7: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
6: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमरीका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
6: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय बेला स्टुडियोको घड़ीमा अपराह्नको 2:30 भएको छ। अब हामी उपस्थित भएका छौं आज लिएर केही सिक्किमे भोटिया लोकगीत, दोर्जी छिरिङ भोटिया अनि साथीहरूको आवाजमा।

0: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सिक्किमे भोटिया लोकगीत दोर्जी छिरिङ भोटिया अनि साथीहरूको आवाजमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। समय बेला स्टुडियोको घड़ीमा अपरान्नको 3 बजेको छ। अब दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गर्दैछौ समाचार।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब 0 हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री जोशी ने कहा कि यह समझौता देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वहीं ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉ राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। महाराष्ट्र में मुंबई के हावा शेवा और सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉ सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में तेलंगाना से ब्रिटेन के लिए निर्यात की पहली खेप को आज सुबह हैदराबाद से रवाना किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। राष्ट्रपति ने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA and the Agreement on Social Security which came into force today is a significant moment in the partnership of India and United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added that the CETA will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. On the Agreement on Social Security or the Double Contribution Convention coming into effect today, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Comprehensive Economic and Trade Agreement will create unique opportunities for the businesses while further accelerating Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. In an article in an English daily, Mr. Goyal assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by placing them in the sensitive list and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. President Draupadi Murmu has said the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. She expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards. Addressing the inaugural function of Sauchrutam 2026 in New Delhi today, the President said the Ministry of Ayush is working closely with the World Health Organization to strengthen the global standardization of Ayurvedic healthcare.
3: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान टेक्निक

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3:11 हुए हैं और वक्त है आप ही के अपने कार्यक्रम मनभावन का, वो कार्यक्रम जिसमें आप सुनते हैं अपनी ही फरमाइश के गीत। जी हाँ, अपनी ही फरमाइश के, क्योंकि ये लफ्ज मैंने दूसरी बार इसलिए दोहराया है क्योंकि कार्यक्रम तो है आपकी फरमाइश का, लेकिन आपकी फरमाइश अक्सर ये रहती है कि हम अपनी पसंद का गीत सुना दें, तो आपकी फरमाइश गीत के लिए होनी चाहिए, हमारी पसंद के लिए नहीं। आज कार्यक्रम की शुरुआत ही मैं इसी बात से, इसी रिक्वेस्ट से, इसी अनुरोध से, इसी गुजारिश से कर रही हूं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर ये कार्यक्रम है आपके लिए मन भावन। मन भावन में आपके साथ आज मैं रहूंगी नईम अख्तर, लेकर वो पिटारा जिसमें होंगे आपकी पसंद के गीत। अब अपनी पसंद के गीत आप हम तक पहुंचाएंगे कैसे? तरीका वही, जाना पहचाना पुराना, या तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल कीजिए। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर है 9868868753, यानी 9868688653। और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। हमारे वो सभी श्रोता जो हमारे नियमित श्रोता हैं, हमेशा FM गोल्ड सुनते हैं, उन्हें ये ईमेल आईडी बहुत आसानी से और फोन नंबर भी बहुत आसानी

ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे वो श्रोता जो अभी भी हमसे जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता कि हमारा ईमेल आईडी क्या है, और नईम ने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, तो नईम आपको अपना ईमेल आईडी बहुत आसानी से स्पेल आउट करते हुए दोहरा देती है, FMGOLDAIRDELHI@gmail.com। अब तो ठीक है ना, अब मत कहिएगा नहीं बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया था, ईमेल आईडी हम तक पहुंच नहीं पाया, हम फरमाइश कैसे भेजते, हमने आप तक अपनी ईमेल आईडी पहुंचाई है, आप हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाइए। और एक फरमाइश जो कार्यक्रम के शुरू में ही हम ले रहे हैं वो भेजिए हमें चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, विमला नहीं बिमला अनेजा ने, इन दोनों ने सुनना चाहा है ये गीत।

0: तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:25:40 कार्यक्रम मन भावन। मन भावन में आपकी पसंद के गीत, आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाने के लिए यहां हम बैठे हैं आप ही के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मन भावन। और मन भावन में अभी जो गीत आपने सुना वो गीत सुनना चाहा था स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया ने। और अगला गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो भेजा है सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने। इन्होंने लिखा है कि आप पूछा है प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो? जी बिल्कुल मूसा मोहसिन साहब, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और आगे लिखते हैं कि दुआओं में याद रखना। जी दोस्त, बस यही एक चीज है जिसकी जरूरत आपको, हमें, हम सभी को है, दुआओं की सख्त जरूरत रहती है हर मोड़ पर, हर वक्त, हर कदम पे। तो हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खैर, जो गीत इन्होंने सुनना चाहा है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी ये बता देते हैं कि आप अपनी पसंद का गीत हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अपनी पसंद का गीत हम तक भेजने के लिए आपको ईमेल करना होगा, ईमेल आईडी हमारा रहेगा आपके लिए वही जाना पहचाना पुराना fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। तो भेजिए हमें फरमाइश। और कार्यक्रम शुरू होते ही हमने ये कह दिया था कि प्लीज ये मत लिखिएगा कि हमारी फरमाइश, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। तो इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद, कार्यक्रम के शुरू में ही ये कह देने के बावजूद, धड़ल्ले से हमारे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें लिखा हुआ है अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जी हमारी पसंद आप ही की पसंद है, हम तो जानते ही नहीं गीत क्या होता है, संगीत क्या होता है, फिल्में कौन सी होती हैं, वो तो सब हम आपकी पसंद का सुनवाएंगे ना। अब देखिए जब हमको पता ही नहीं तो हम कहां से सुनवाएंगे। तो बेहतर है आप ही लिख के भेज दीजिए, हमें बता दीजिए, हम गीत सुनवा देंगे, है ना। अब आप समझ लीजिए हम यहाँ पर एकदम अनाड़ी बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, आप भेजेंगे तो हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। और अब जो गीत हम सुनवा रहे हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन की पसंद का, वो है प्रोफेसर फिल्म का ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:58:55 हो रहे हैं। कार्यक्रम मन भावन आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट और बचे हैं और इन 20 मिनटों में हम जो गीत आप तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी जो गीत आपने सुना वो गीत हमारे पास फरमाइश भेजी थी राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। तो ये आपके पसंद का गीत तो आप तक पहुंच गया। और दोस्त हम अपना ईमेल आईडी आपको दोहरा देते हैं, हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपनी फरमाइश का गीत हम तक पहुंचा सकते हैं वो है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। इस पर आप अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाइए। मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर और अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो हमारे पास ईमेल किया है सोनीपत हरियाणा से मुशर्रफ, सूफिया, इस्मत, बरीरा, आयशा, अब्दुल रहमान, अलबा और अनन्या ने। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सहारनपुर से शारिक, शाहिदा, अहमद और माहम की। आप सभी ने गीत सुनना चाहा है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये गीत फिल्म आप तो ऐसे न थे का था है मतलब। और मजेदार बात यह है कि ये गीत जो है फिल्म में एक नहीं दो नहीं तीन बार है और तीनों बार अलग अलग आवाजों में है। एक गीत जो है वो हेमलता की आवाज में है, दूसरा गीत मनहर उदास की आवाज में है और तीसरा गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है मोहम्मद रफी की आवाज में। अब मोहम्मद रफी की आवाज में हम क्यों सुनवा रहे हैं, गीत की फरमाइश आई है, तीनों में से कोई से भी सुनवा सकते हैं। तो हमारे दोस्त जिन्होंने ये गीत लिख के भेजा है मुशर्रफ और उनके सभी घर वालों ने, उन्होंने खास तौर पर लिखकर भेजा है रफी साहब वाला गीत सुनवा दीजिए। तो रफी साहब वाला गीत आपकी नजर ये रहा, सुनिए, लुत्फ लीजिए और बाकी सभी श्रोताओं से यही कहेंगे सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:51 और मन भावन कार्यक्रम में जो गीत अभी आपने सुना, पीतल की मोरी गागरी, तो ये गीत था फिल्म दो बूंद पानी का और इसको सुनने की फरमाइश भेजी थी किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। तो आपकी पसंद का गीत हमने सुनाया, गीत बहुत मधुर था, बहुत प्यारा था, लेकिन बहुत दिनों बाद हमने सुना, हमें भी अच्छा लगा। और अगला गीत जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत, रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रुचिका रामेकर ने इस खूबसूरत मधुर नगमे को सुनना चाहा है।

हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। बसीर बद्र। नमस्कार, ये आकाशवाणी का गांधु केंद्र है। मैं हूं आपकी मेजबान कविता शर्मा और अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सौर्य गाथा, जिसे आप FM कंचनजंगा 103 मेगाहर्ट्ज या न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं। कहने को तो दिल शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है जो धड़कता है और हमें जीवित रखता है, लेकिन अगर हम भावनाओं की दुनिया को में देखें तो दिल ही हमारे हर जज्बात का समुन्दर है। दिल समुन्दर से भी गहरा होता है जिसमें हजारों बातें समाई हुई होती है। ये दिल ही है जो प्यार में धड़कता है और किसी की तकलीफ देकर पिघलता भी है। धोखा खाकर संभलने का हौसला भी दिल ही सिखाता है। दोस्तों, अब दिल पर एक अच्छा सा गीत सुन के मूड को ऑन कर लेते हैं। अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सजी हुई यह गीत फिल्म रजिया सुल्तान से, जिसे हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है और इस गीत को अपनी धुन से सजाया है ख्याम ने और गीतकार है जानिसार अख्तर। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आपने सुना फिल्म रजिया सुल्तान का गीत। दोस्तों, दिमाग जहां सही और गलत का हिसाब लगाता है तो वहीं दिल हमें इंसान बनाए रखता है। जब हम दिमाग की बजाय दिल से सोचते हैं तो नफरत की जगह मोहब्बत और स्वार्थ की जगह हमदर्दी ले लेती है। दुनिया में हर बड़ा बदलाव, हर महान काम किसी न किसी के दिल में जगी एक छोटी सी चाह का ही नतीजा है। इसलिए जिंदगी के इस सफर में अपने दिमाग को सजग रखिए, लेकिन अपने दिल को हमेशा साफ और खुला रखिए, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वही दूसरों के दिल को छूती है। बातें आगे होती रहेंगी, अभी देर न करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म दिल से, और इस गीत में मनीषा कोइराला और शाहरुख खान देखने को मिले हुए हैं, और इस गीत को आवाज और संगीत से सजाया है AR रहमान ने और गीतकार है गुलजार। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज हम दिल पर बात कर रहे हैं। ये दिल आखिर है क्या? लोग दिल पर अपनी अपनी परिभाषा देते हैं और मुझे लगता है कि दिल वो घर है जहां रिश्ते खून से नहीं बल्कि अपने आप बन जाते हैं। दिल की बात हो रही हो और शायरों का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? बड़े बड़े शायरों ने दिल पर कुछ अपना अपना तजुर्बा कुछ ऐसे बयां किया है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यानी दिल नादान होता है जिसमें दर्द स्थायी रूप में घर करके बैठती है और उसका कोई इलाज नहीं होता। सच ही कहा है गालिब साहब ने, हम उनसे भी उम्मीद लगा बैठते हैं जो वफा के लायक नहीं होते और भीतर ही भीतर टूट के रह जाते हैं। वहीं जावेद अख्तर ने दिल की गहराइयों और उसकी नादानियों और जज्बात पर खूबसूरत पंक्ति कही है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये पंक्ति इंसान को मुश्किल वक्त में हौसला देती है और हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में अपने आप को मजबूत रखना है। बातें आगे होती रहेंगी। अभी सुनते हैं फिल्म दादा से यशुदास की आवाज में सजी हुई ये गीत। उषा खन्ना है इसके गीतकार और ये विनोद मेहरा और विंध्या गोस्वामी पर फिल्माया गया है। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हमारे गुलजार साहब ने दिल बहुत नादान होता है और वो बचकानी हरकत करता है, कहते हुए कहा है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। वहीं दूसरे गीत पर गुलजार साहब ने दिल के दर्द और जिंदगी के तालमेल को दिखाया है और कहा है, तुझसे नाराज नहीं ए जिंदगी, हैरान हूं मैं, हैरान हूं मैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब हमारा दिल किसी पे एतबार करता है तो हम पूरी तरह से उसके हो जाते हैं, उसकी ही पूजा करते हैं, उसको ही सजदा करते हैं। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारे खिलाफ हो भी, तब भी हम दिल की ही सुनते हैं। जब हमें सच्चा प्यार होता है तो हमारा दिल हमारे हाथ में नहीं रहता, वो कहीं खो जाता है और हमें हर वक्त उसकी ही याद सताती है। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी ही याद सताती है। दोस्तों, अब इसी के साथ सुनते हैं फिल्म दिल क्या करे का गीत, अजय देवगन और काजोल पर फिल्माया गया है, जिसे आवाज से सजाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और इसे संगीत दिया है जतिन ललित ने, और गीतकार है हमारे आनंद बख्शी। चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जब हमारा दिल टूट जाता है तब भी हम मुस्कुराते हुए चलते हैं, लेकिन हमारे दिल में बहुत गहरी चोट लगती है, फिर दिल किसी पे भरोसा नहीं करता। मुझे इस वक्त इंदिवर साहब का गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा याद आ रहा है। सच में दिल टूटने के बाद हम बर्बाद हो जाते हैं और हम ना घर के ना घाट के रह जाते हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, मोहब्बत के नाम पे किसी के दिल को दिल का सौदा मत करना, खुदा का खौफ करना है दोस्त, क्योंकि यहाँ हर कोई दिल बेचने और खरीदने नहीं बैठा है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म अमानुष से इंदिवर साहब का ये गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने और यह गीत शर्मिला टैगोर और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया है। चलिए सुनते हैं यह गीत।

0: tungtara ajis jaga prabandha so menje khanja ajis menbongwa menje khalle ku yung majaga ajajuk basa ku yak majaga khalle jabe ne ji alu dak chhe menbongwa
1: lathik 1 liter len alu pitnu de ku menlung akhen wa ila ro pangbia ho
0: ani ke mu tyo machine answer bu kan fat acid
1: kan fat taru je pitnun me de ruang je unchi je sikkim milk me jugo
0: hajur
1: dairy ba
0: hajur
1: adang bari akhen pang pang be ba akhen hima lam jai kolek ke jo guang je pinun ke deru
0: allo 35 gar la ma
1: 35 gar din le akhen pe ke la pinu
0: 250 ta pe la an da che
1: e
0: cho ni cho ken sam da cho
1: ken adang bari abang ye ke deru bi ki ki long ma ma
0: ke rung ba ma ma mo kun salary
1: pimasi
0: ne yun do ar kar carpet alam salary me gosu
1: e ninje carpet alam e
0: hoje
1: kon ninje ar akhir te ma sukte ki me masi bung bi
0: he mo bi me da la abang ye kon society mo do jab society registration bung je tang je kon la dan je kon him mo do ketta ki road side mo do
1: kon tang bi mo je pit yori me gotu wang je akhir thung ji thai
0: kon gun ji thai me bung ne ba sa ki ani do khol jom lag je focus so mo ma
1: pik ma pore
0: ha je inga 2 barsa sam kon diary khol jom lag je society khol jom khatam machine pe ni ba phi pham ma yo
1: ha
0: je kam mun te er me
1: e alo gar je tuksi ra wa
0: ha je tuksi kum
1: ma phi di aje sik sang bak lu pong e ki lak jo
0: ha je तो अंगावन में गो तो डायरी लंबे अरे ना लोकल सेल बेक्सन डायरी लंबे लब बेसी में गो तो की
1: अदम बारे आगो ताये मुझे युक्फो लम योरे कुबा की घोषण की घोषणा रह जाए कौन इंजे अखिम बात हो बो चुक मनी वाकी जो हम
0: किताबे में कुबा अते नुबा को डाले जी हो कौन दे मुझे योरे नोगेन पीम अनि के पंगे साबर लम योरे योरे नोगेन ना थियंग बेले जी कौन आठ रुपए लम जी यरिक मना जागरूकता मे बोके केता केता बे म खेलले जोगुल ए लति पित्तंग मजाले महिंग गुसिरा म आरो दते महिंग गुसिरा मे ब अनंग आरो केता बा जेनेरेशन पुमेन सारे लागि जे केता बे मजा र लति अनि एम्प्लॉय जॉब खो मे नेनसंग नुब नुबा पित्ता हिंग मसि आंगे नुबा चल जोग म लति सिस्टमेटिक चल जोग म गर जे लति सिस्टम चल जोग म गर हिंग मसि गर जे कन सुविधा त वारे छ अझै कन सिस्टम मथि वाबले जे कटिंग मशीन ना त्यो खोकमा बि मसि गोंने
1: जस
0: ओ जत मशीन न वा गरे जे घास एकदम पुरा फारो जो ठिकन वेस्ट मे गोंने फेराने खेलले जो गले जे सिस्टमेटिक हिंग मसि गरे जे केदाबे म जे सजिलो वा अझै ट्रेनिंग पुरा आ र पोंग ल बा कन ट्रेनिंग असु म गरे जे लतिक ट्रेनिंग म जे साइलिस मे न देन न यु कोंगेंगे बा पानी साइलिस सिंकी मे त ओ कोन जे यान ने अंग जे घास ले मा मा किया हे मंग जे ले मंग जे कन साइलिस चो म गरे जे कन साइलिस जे फेट त मेरा ने नै 360 दिन संग पी मा नु गरा बा लतिक थाम बे दोंग वा कन ट्रेनिंग म मे उडी गा खेलले जुगले खन था चोक मोर आजे सुबिस्ता बुंग बरसे खन सिंग आजे यूज खन जे यूज मेन जक या कंप्लीट मेन बुंग वा गम से आ पिट ले था बे आजे चोंग ले अक्का आइ पिट ले युक ना हा केरे अनंग गन साइलिस सो मलन लति रूम यम बद जा जक बरसे मजा ले युंग म बने सुबा मेन ला म बन मेन ला ते युंग म बने रसे हंदा जे अनंग जे केदा बे मजे खाउन इनकम है पोमेन सारे लागी है जॉब खुम दे नन नंग जे हरिस जे जामेन खा युंग मेन डिप्रेसन म पिक मेन आमा जो मंगसंग लाति अनि मेन जे यंग सा सा थक म बने खेल जे गले जे अर पि हिंग मंगसंग पोंग बि अर हमा थे थे यंग बक चो मंगसंग बोंग बि खेल जे गले जे हरेश जे जा मेन गरा बत तुम नि मंगसंग लाति अर प्राय जे पि हिंग म मेंगुन अर के दा बेन म जे अर ब जेनेरेशन म जे खेल जे गले पि हिंग म मेंगुन बा म जे अज अर डिप्रेसन न पोंग म सुक के इंगे जे हमा म जे मेन जो के के दा बेन फर्स्ट मारा बाका बाका यां बकंग जो गंग अर टॉक टॉक मा मा का मांग मा का मा का पियांग वे हम फिर हिम मनु खंग यांग जे अर लति मिस्ट्री यां बक है हिम मा बिल्डिंग हा चोक मा केरे हु सिंग यांग जु हु सिंग मा जु रंग संग फिर मेनु नेम बार सा आइ बाका बाका चोक नान जे पंग फिर मुझे बैकवर्ड तो पोंग बिक पाए सके अ बाका बाका वा मगर जे खेलले जो गले जे कन अर आलो जे अर बिल्डिंग मिस्ट्री अनि गा थकि दु हु सिंग जु रे बाकी न कन अर जे लरंग वा हन जे अरे सी एम दे नंबर से जब पिट नाला में बिमा जे नंग जे खन बिल्डिंग मिस्त्री हिम मिस्त्री डल्ले अर अन इ जे बस्ती मु बोख्यांग बि साइड जमा हु सिंग मा मौकांग खोम ना दाजु अनु नंग जे अरो जे खन याम बखा जे अरे वे मेजोग्राम अनि गंग कोइ केबेला हु रुम सिबे फेरि खन जे अरे कोइ बेला जे भाका भाका बेग मा बोंग बारसा भाका भाका वा अमा ले जोगले जे बंगपेन जे जिस बैकवर्ड पुंग लेसा खेले जोगले फेरि गंग खन पिट हिम मेम द तगी लासंग है तगी फु फु सुंगला बता ल दाक्से

Thank you.

기골레 슈셰디나 참작대기 다링기 레림 너덜 행게줄로 숭루직 피도인 아지기 대정 벨레림 세모나지나 주보노

0: Lasso semono ken lenge tsuki tatup santel unten khanga to le pangi me to te jung pelerim kyabda semona boi taring ki thulle nga chi ki lerim ki chamsi yana chambobe ta bungthen chi gyaple chuje thuk dungwale gyalsa deli le kyuti ki hindi ke na taring ki gyakhap nime kochu ki ne chul semona thanga lerim dile kom shudoin tuji chi
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कम्प्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगोआपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति एनआईपीयू 2026 को भी मंजूरी दी। एनआईपी 2012 की तुलना में एनआईपीयू 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यो आकाशवाणी गान्तोक हो। हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार 6:05 भइसकेको छ। अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत दलप लिङ्मु नाम्ची जिल्ला निवासी

0: सिक्किममा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विशेष सघन पुनरावलोकन स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन एसआईआर 2026 र यसको आधारमा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूचीले राज्यको राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस शुरू गरिदिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ राजकुमार यादवद्वारा सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्कहरू केवल संख्या मात्र होइनन्, यिनीहरूले सिक्किमको भावी राजनीति, जनसांख्यिकी परिवर्तन र प्रशासनिक दक्षताको गहिरो ऐना प्रस्तुत गर्छन्। 30 मईदेखि 28 जूनसम्म चलेको घर घर गणनापछि 5 जुलाईमा ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित भइसकेको छ। यस समीक्षाको सबैभन्दा रोचक र रणनीतिक पाटो भनेको संख्याको अन्तर हो। सिक्किमको कुल 4,71,018 मतदाता मध्ये 4,33,294 जनाले मात्र गणना फारम बुझाएका छन्। यसको अर्थ झण्डै 37,724 मतदाता अर्थात लगभग 8% यस प्रक्रियामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएनन्। निर्वाचन विभागले यस्ता मतदाताहरूलाई एएसडीडी एब्सेन्ट, सिफ्टेड, डेड, डुप्लिकेट, अनुपस्थित, बसाइसरेका, मृत, दोहोरो दर्ता श्रेणीमा राखेर बहिष्करण सूची तयार पारेको छ। वर्षौंदेखि सिक्किमको राजनीतिमा जाली मतदाता र एउटै व्यक्तिको दुईवटा क्षेत्रमा नाम भएको गुनासो रहँदै आएको थियो। यो 8% कटौतीले मतदाता सूचीलाई निकै हदसम्म क्लीन बनाएको छ, जसले आगामी चुनावमा वास्तविक जनमत मात्र प्रतिविम्बित हुने सुनिश्चित गर्दछ। यो 37,000 संख्यामा धेरै जसो रोजगारी, शिक्षा वा स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्य बाहिर रहेका वैध सिक्किमेली नागरिकहरू पनि हुन सक्छन्। यदि उनीहरूले जुलाई 5 देखि अगस्त 4 सम्मको दावी र आपत्ति अवधिमा फारम 6 भरेर आफ्नो नाम पुनः दर्ता गराएनन् भने उनीहरू सधैँका लागि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन्। यस सन्दर्भमा सिक्किमका मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार यादव भन्नुहुन्छ,
1: हमारी एसआईआर प्रोसेस आपको बताई है कि 20 मई से स्टार्ट हुई थी और 28 जून को हमने हाउस टू हाउस सर्वे कम्प्लीट कर लिया है। 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक हमने ड्राफ्ट ईरोल प्रिपेयर किया है। ये प्रिपरेशन होने के बाद में आज के दिन 5 जुलाई को हमने पोलिटिकल पार्टीज को भी जितना भी कॉपी है वो सब दे दिया है और जो भी डाटा है वो हमने अपलोड भी कर दिया सीओ वेबसाइट में ताकि सभी लोग उसको देख पाए। अगर हम स्टेटस वाइज जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो डिलीशन है वो लगभग 37,000 वोटर्स का डिलीशन है और जो एड है वो 4,33,000 लोगों का एड है। हमने 53 पोलिंग स्टेशन नए जोड़े हैं जिसके कारण हमारे पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ गई है और 53 के कारण उनका रेसलाइजेशन होके 1200 से कम थी जितने भी लोग इलेक्टर्स हैं सभी पोलिंग स्टेशन में 1200 से कम लोग हो गए हैं। हमने एआरओ और ईआरओ भी बहुत सारे अपॉइंट किए हैं ताकि जो नोटिस पीरियड है उसमें हियरिंग अच्छी तरह से हो सके, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बहुत सारा अच्छी तरह से हो सके। रोल ऑब्जर्वर ईसीआई ने अपॉइंट किए हैं, 3 और रोल ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं जिसमें 2-2 डिस्ट्रिक्ट का जिम्मा 1-1 रोल ऑब्जर्वर को दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग 38,000 लोगों को नोटिस जाने वाले हैं जिनका नाम 2002 के इलेक्ट्रोल रोल में नहीं था और 50,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस जाने वाले हैं जिनका नाम 2002 के इलेक्ट्रोल रोल में था बट कुछ एनोमली है, उनके नाम में सरनेम में कुछ इश्यू है तो उनको भी नोटिस जाएगा। सो टोटल मिला के 88,000 और 90,000 अप्रोक्स फिगर आता है जो नोटिस जाने वाले हैं। अगर किसी को नोटिस मिलता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो टाइमली नोटिस की डेट में आकर ये ईआरओ के सामने उपस्थित हों और अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें ताकि हम वेरीफाई करके उनका नाम ऐड कर सके। यदि उस नोटिस पीरियड के टाइम में वो कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो उनका नाम डिलीट माना जाएगा। अब आने वाले टाइम में इन 90,000

0: वर्षा याममा देखिने सामान्य रोगहरू अनि यसबाट बाँच्ने उपायहरू यसबारे जानकारी दिन भनी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ सिक्किम मणिपाल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सका प्रोफेसर मेडिसिन डाक्टर मोना ढकाल र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 03592201171 कल गर्न सक्नुहुनेछ दिन अनि समय आगामी 17 तारिक जुलाई 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर छ 03592201171 सूचना पूरा भयो
1: यो सुन्नुहोस् एक सूचना आकाशवाणी गान्तोक सोसियल मीडिया म्यानेजमेन्टको लागि यंग डाइनेमिक र क्रिएटिभ इण्डिभिजुअल्सबाट सामयिक अर्थात क्याजुअल ब्रडकास्ट एसिस्टेन्टको लागि आवेदनको आमन्त्रण गर्दछ शैक्षिक योग्यता कुनै पनि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएट हुनपर्छ यसको साथै मास कम्युनिकेशन जर्नलिजम सोसियल मीडिया म्यानेजमेन्ट भिडियो एडिटिङ ग्राफिक डिजाइन फोटोग्राफी भिडियोग्राफी साथै डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएशनमा दक्षता हुन आवश्यक छ योग्य इच्छुक उम्मेद्वारहरूले सम्पूर्ण आवश्यक प्रमाण पत्रहरूको प्रतिलिपिसितै बायोडेटा अनि भर्खरै खिचेको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफसित आफ्नो आवेदन आकाशवाणी गान्तोकमा आगामी 10 अगस्त 2026 बुझाउन पर्नेछ आवेदन इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मेल आईडी छ phaiargantok@gmail.com
2: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं यसका साथै श्रोताले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ त श्रोता आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित हेलो आकाशवाणी गान्तोक
3: कैसी हो
2: हेलो नमस्कार
3: हाँ नमस्कार दीदी
2: जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
3: तिरंग रेडियो सोता संघ बसैन मंडा वेले से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे दीदी
2: अरे लक्ष्मण जी
3: हाँ
2: चाय पी लो आज कार्यक्रम के फर्स्ट में ही चाय लेकर आ गए
3: हाँ दीदी
2: फर्स्ट कॉलर है आप
3: हाँ जी हाँ जी
2: नहीं तो कार्यक्रम के आधा भाग में नहीं तो बाद में आते थे
3: हाँ बाद में भी आ जाते पहले में
2: लगता है कि दुकान में बहुत भीड़ भाड़ है
3: हाँ भीड़ भाड़ तो रहती है
2: भीड़ भाड़ ही रहते हैं ना चाय के साथ क्या देते बिस्किट
3: चाय के साथ बस एक दुकान है नाश्ता मोगड़ी है लस्सी है
2: सब
3: है मलाई की बर्फी है समोसा मोगड़ी है सब
2: बापरे
3: आप आइए एक आठ बार पीने के लिए
2: जरूर आएंगे आप बोलते है ना इतने स्वादिष्ट ढंग से बोलते है ना चाय पी लो तो सच में चाय पीने का मन करता है जी जी लक्ष्मण जी इतने बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में फिर भी हमारे कार्यक्रम हेलो श्रोता का समय आपको पता है समय निकाल कर कॉल करते हैं ये बहुत अच्छा लगता है ये आप लोग का प्यार है कार्यक्रम के लिए जी बताइए लक्ष्मण जी गाना कौन सा सुना है
3: आज गाना सुनवा दे एक पिक्चर है नदिया के पार सांची का है मोरे यहाँ बन से अंगना में आई बाहर
2: बताइए किस किस को सुनाना चाहेंगे
3: ये हमारे रहेंगे गजराज लोधी मांगीलाल चंद्र बतन कटारे ऋषिकेश तिवारी अमित तिवारी ये सब हैं दोस्त जो सुनना चाहे
2: जी जी जी धन्यवाद
3: ठीक है सर जी नमस्कार जी

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी,
1: मैं आसाम से बात कर रहा हूँ, सुतपा बोलते जरिए।
0: जी सुतपा जी, सुतपा जी पता चल गया, हेलो बोलती सुतपा जी। तो हमारे कार्यक्रम का इतना मतलब कार्यक्रम हेलो श्रोता ही नहीं, सब जितने भी लोग सुनते हैं सुतपा जी तो इतना फेमस हो गए कि हेलो बोलते सबको पता चल जाता है।
1: जी जी जी
0: जी सुतपा जी कैसे है?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।

0: तो बाजी को तो यही पूछेंगे, आज बुधवार है मच्छी बनेगा?
1: आज तो मछली नहीं है,
0: ओ मछली नहीं है आज,
1: मछली नहीं है, सब्जी बनाया
0: ओ सब्जी बनाया आज, लौकी का सब्जी।
1: बनाया। जी,
0: लौकी का सब्जी रोटी।
1: सब्जी
0: अच्छे से खाओ। नहीं पिछली बार आपको बुखार आ रहे थे ना, अब ठीक हो गए कि नहीं?
1: ठीक हो रहा है।
0: ठीक हो गया जी। सुतपा जी अब ठीक हो गया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो बताइए सुतपा जी, गाना कौन सुनाए, कौन सा सुनाए?
1: गाना सुना दीजिए, बाजीराव मस्तानी।
0: बाजीराव मस्तानी।
1: बजने से बजने दे दरक दरक दौल ताश तरक तरक, दोस्तों के नाम लूंगा।
0: जी जी जरूर।
1: पहले तो आपके लिए
0: धन्यवाद।
1: उत्तम सर के लिए, समधिक चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, आरबी प्रधान, अविनाश तेली, लुकंद वर्मा, सुषम कुमार, विजय सिंह लकेरा, श्रीकांत जोशी, सबके लिए,
0: सबके लिए ना।

0: हेलो आकाशवाणी का
1: नमस्कार पूनम जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: गुजरात से बात कर रहा हूँ।
0: गुजरात से?
1: नाम तो नहीं पहचानोगे लेकिन फिर भी मैंने बोला कि गुजरात से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, नाम बताइए।
1: धीरज रबारी बात।
0: ओ धीरज जी,
1: वैसे धीरज नहीं रखता, माफ करना। मौसम कैसा है आकाश वहाँ गैंगटॉक में?
0: गैंगटॉक का मौसम तो कभी बारिश कभी धूप ऐसे चल रहा है।
1: यहाँ भी ऐसा ही है, अभी धूप खिली है, बादल भी छाए
0: ऐसा ही,
1: लेकिन साथ साथ में मोर भी बोलते हैं। बारिश जैसे देखा जाए तो पड़े तो एक गर्मी में थोड़ी बहुत राहत मिले। आपके वहाँ तो शायद गर्मी कम होगी, हमारे यहाँ गर्मी
0: कम होता है यहाँ पर, तो फिर भी राहत तो मिलते है बारिश होने से।
1: हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। और हम साथ ही आकाशवाणी गंगटोक का प्रसारण सुनते हैं और आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है
0: जी। सुनते हैं ना
1: जी, तभी तो बात कर रहे हैं आपसे। और भारत के और श्रोता भी जुड़ते हैं और वो जो बातचीत करते हैं उसमें भी हमें कई जानकारियां मिल जाती है।
0: जी जी, ये तो है, ये तो है, हमारे कार्यक्रम है ही ऐसे ना।
1: हाँ, आप लोग इतनी मेहनत से कार्यक्रम बनाते हैं और श्रोता इतने बढ़ चढ़ के सुनते हैं तो कार्यक्रम सफल हो गए उसमें तो सवाल ही नहीं। और इस सफल कार्यक्रम के लिए हम सब आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप टेक्निकल टीम है और सभी अनाउंसर को
0: जी। आप लोग का भी धन्यवाद, समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं इसीलिए।
1: जी जी, पूनम जी आज गाना सुनना है।
0: जी जरूर जरूर।
1: अखियों के जरों पे से फिल्म का गाना है, शीर्षक गाना है अमृता की आवाज में। ज्यादातर ये गाना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: जी जी जी,
1: ये नाम ले सकूँ?
0: जरूर जरूर।
1: हमारे आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप के गुणवंत भाई कड़ू, गौतम राय बोले जी, तुकाराम यादव जी, गंगाधर सावंत जी और लोकेन्द्र वर्मा जी, इन सब दोस्तों के साथ गाना सुनूंगा और आप भी सुनोगे।
0: जी जरूर जरूर, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाश विनिकांत,
1: अजी सुनो है के अजी काय कह रहा हो अजी, सभी आकाशवाणी गांटो पे फोन लगा रहा है, तू भी लगा। मैं तो को नहीं लगाऊ, क्यों? क्योंकि वटत वाला मारो रेडियो पकड़ा ही कौन है। हाये तू रेडिया की चिंता छोड़, अब न्यूज AIRF के माध्यम से आकाशवाणी गांटोक चल सकत है। अच्छा तो मैं भी कल ही डाउनलोड करूँ, कल क्यों, आज ही डाउनलोड कर और आकाशवाणी गांटोक चल तू भी सुन सकत है घर बैठे कभी भी कहीं भी।
0: अरे बाप रे, ये तो कार्यक्रम का ओपनिंग तो इतना अच्छा कर दिया।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
0: अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: पूरन वर्मा जी खाली ये कर सकता है।
1: जी मैडम,
0: और कोई नहीं कर सकता है।
1: जी मैडम, हम कोशिश करते हैं कि हम रेडियो के माध्यम से जुड़े रहे और ऐसे अच्छी बात बोले ताकि श्रोताओं को भी अच्छी लगे और जो रेडियो रेडियो आते हैं तो उनको भी अच्छी लगे।
0: जी जी जी, अच्छा लगा मगर।
1: जी बेटा, थैंक यू मैडम। वो सुनाइए कैसे मौसम है, क्या?
0: मौसम तो ठीक ठाक चल रहा है, अब ऐसा है कि हर एक जगह पर कभी बारिश कभी धूप।
1: इधर भी ऐसा हो रहा है मैडम, मौसम बारिश का इंतजार है मैडम। ये कि थोड़ी समस्या ये हो गई कि हम खेतों में किसान लोग है ना, तो खेतों में भी वो बो तो दिया बीज मैडम, पर बारिश का इंतजार है। अगर बारिश नहीं आएगी ना मैडम तो नुकसान है मैडम, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है कि खेतों में जो बाजरा हमने बोए ना वो जलने की संभावना हो रही है मैडम।
0: जी जी, पूरन वर्मा जी आप तो हमारे कार्यक्रम रोज सुनते हैं ना?
1: हाँ जी मैडम, जी
0: जो हमारे कार्यक्रम में एक नियमित कॉलर थे अशोक खतीवाड़ा जी, आपको तो पता है।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम, वो कॉल भी करते रहते हैं रेडियो पे।
0: उनका मतलब 2 तारीख को वो हम लोग सबको छोड़कर चले गए ना, इसलिए हम लोग सब भी शोक में डूबे हुए।
1: अच्छा मैडम,
0: तो मुझे भी पिछले सप्ताह ही पता चला।
1: जी जी,
0: क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम में, आप लोगों को तो पता ही है, हमारे कार्यक्रम में भी कॉल करते रहते थे।
1: हाँ मैडम, वो कॉल भी करते रहे रेडियो पे, बातें माची बातें करते थे मैडम, वो उनका कॉल भी मैं सुनता रहता था। बस ये है कि थोड़ा उन श्रोताओं का कॉल कम लगता था, पर कभी कभी आते थे ना।
0: कभी आते थे,
1: ये होते हैं उनके हमारे जैसे वो होते हैं ना श्रोता, तो दुख भी होता है, पर ये होता है कि जैसे उनसे बातचीत हो जाती है ना, हो जाती है ना, तो उनके बारे में वो बताते और हमारे बारे में हम बताते, तो वो भी जो सुनते रहते हैं तो उनको भी मैडम। और कई सोता था मेरे से, सिक्किम के सोता था, एक दो बार मैं नंबर बोला था ना, तो बहुत सारे ऐसे सोता थे जो मेरे संपर्क में भी आ गए थे, बात भी करते मैडम।
0: जी जी जी जी, ऐसा है ना, तो अभी थोड़ा जो हमारे कार्यक्रम में, हमारा कार्यक्रम हेलो श्रोता ही नहीं, हमारे आकाशवाणी गांतो के और भी कार्यक्रम थे, वहाँ कार्यक्रम में भी उन लोग का अनुरोध संगीत में भी बहुत सारे नाम आते थे, वो लोग पत्र लिखकर भेजते थे ना, तो बहुत बुरा लग रहा है।
1: तो उनकी याद में फिर मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, वो गाना है टिट्टी ना कोई संदेश कहाँ तेरा देश जहाँ तुम चले गए, ये गाना मैं सुनाना चाहता हूँ मैडम, ये उनके लिए रहेगा खास कर ये गाना।
0: जी जी जी,
1: और जितने भी कॉलर सुन रहे हैं आकाशवाणी गांटोक के कॉलर, उनके लिए मैं सुनाना चाहता हूँ मैडम ये गाना।
0: जी जी जी, धन्यवाद पूरन वर्मा जी, धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से पूनम दीदी का भाई मांगीलाल चंदेल और हसमुख चंदेल बात कर रहा हूँ।
0: हसमुख चंदेल जी
1: जी
0: जी, हसमुख जी आज हंसते हंसते कार्यक्रम में आ गए ना?
1: हाँ बहन जी, 2 हफ्ते बाद आया हूँ आज।
0: दो हफ्ते में पहुँचे हैं गैंगटॉक।
1: हाँ, 2 हफ्ते लगा दिए मैंने, आते आते 2 हफ्ते हो गए।
0: दूर हो गए इस बार तो,
1: को भी मौका देना चाहिए,
0: मौका भी देना चाहिए। अभी तो दूर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब इतना बारिश हो रहा है।
1: अब बहन जी बारिश तो नहीं है, आप बताऊँ, बारिश हुई थी लेकिन अब थम चुकी। 5 रोज से बारिश नहीं है हमारे मध्य प्रदेश।
0: ओ ऐसा है, फिर मध्य प्रदेश के कई जगह पर तो हम लोग ने
1: देखा, कई जगह पे तो बाल के हालात बन गए, सड़क संपर्क टूट गए, इतनी भयंकर बारिश हुई है अभी।
0: जी जी जी।
1: और कई क्षेत्र में नहीं हुई,
0: नहीं हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: तो कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में?
1: मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं मेरे अनुमान से, एक आध कम ज्यादा होगा नहीं, 52 का पता है मुझे।
0: 52 जिले, बाप रे।
1: कुछ जगह अच्छी बारिश भाई मध्य प्रदेश में, कुछ जिलों में, और कुछ जिलों में थोड़ी कम भाई।
0: थोड़ी कम है, आप लोग को यहाँ पर हुआ ही नहीं? हुआ था मगर अभी नहीं है।
1: हाँ अभी नहीं, अभी तो कहीं के जिले में नहीं है, 52 में से एक जिले में नहीं है मेरे।
0: बाप रे।
1: आप लोग को तो बिल्कुल, बादल तो आते हैं दीदी, इस समय पूरा पश्चिम से बादल आ रहा है और पूरब को जा रहा है, काले काले बदले जा रहा है, लेकिन वो बरसते नहीं है,
0: बरसते नहीं,
1: और हमारी फसल बिल्कुल पानी पे आ रही है, पानी चाहिए हमारी फसल को।
0: ओ, आप लोग को तो समस्या हो जाती है, जितने भी खेती
1: समस्या हो जाती है। सही है। तो आपकी तरफ कैसी बारिश है बहन जी?
0: यहाँ पर तो बारिश होता रहता है, बारिश 12 बजे के बाद पूरा बारिश हो जाते है, फिर रात को भी बारिश हो जाता है, सुबह थोड़ा थोड़ा आता है, फिर दिन में कई धूप आता है, फिर बादल भी छाया जाता है यहाँ पर तो पूरा।
1: आपके क्षेत्र में क्या फसल लगाई जाती है?
0: मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: यहाँ का सबसे स्पेशल है इलायची।
1: इलायची
0: इलायची लगाते हैं, चाय का पत्ती लगाते हैं।
1: अरे वाह। और जी गेहूँ नहीं लगाते हैं? गेहूँ,
0: गेहूँ लगाते हैं। अच्छा लगा मांगीलाल जी से थोड़ा बात भी कर लिया, 52 जिले है मध्य प्रदेश का बोलकर वो भी पता कर लिया
1: जी। जी
0: तो बताइए गाना कौन सा सुना आज?
1: आज मुझे फिल्म खानदान का गाना सुनवा देना था। नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, बसंती लाल जी है, केसरी सिंह राजपूत जी है, भगवान सिंह परमार जी है, रामबाबू शर्मा जी है, और हमारे मित्र है उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा जी, शिमला से राकेश जी, मथुरा से शारदा प्रसाद जी, अमर सिंह साहू जी, और तमाम चित्रा सेन जी, मनोज कुमार पटेल जी, श्रीकांत जोशी जी महाराष्ट्र से, इन सभी को दे दी ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।

0: बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले वृहत आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताले व्यापार, लगानी र नव प्रवर्तनको लागि नयाँ बाटो खोलिरहेको र 75,000 भन्दा बढ़ी भारतीय पेशेवरहरू र 900 भन्दा बढ़ी कम्पनीहरू यसबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। यसै क्रममा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र उपभोक्ता मामिला मन्त्री प्रहलाद जोशीले पनि भारत बेलायत व्यापार सम्झौताले भारतको आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापी साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउनुभयो। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले आज बेल्जियमको ब्रसेल्समा युरोपेली संघका स्टार्टअप अनुसन्धान र नवप्रवर्तन आयुक्त एकाटेरिना जहारिएभासँग भेट गर्नुभयो। उहाँहरूले स्वच्छ र हरित ऊर्जा प्रविधिहरूमा अनुसन्धानका अवसरहरूबारे छलफल गर्नुका साथै नवप्रवर्तन केन्द्रहरू, स्टार्टअपहरू र होराइजन युरोपसँगको सहकार्यबारे पनि विचार आदान प्रदान गर्नुभयो। बेल्जियमको आफ्नो दुई दिने आधिकारिक भ्रमणको क्रममा डाक्टर जयशंकरले बेल्जियमका उप प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री मैक्सिम प्रेबोससँग ब्रसेल्समा भारत बेल्जियम रणनीतिक संवादको सह अध्यक्षता पनि गर्नुभयो। संवादमा छलफल द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र भारत ईयू सहयोगलाई तीव्र पार्ने कुरामा केन्द्रित थियो। भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सुधार गर्न र विश्वव्यापी द्वन्द्वहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएका कारण संयुक्त राष्ट्र संघमा जनताको विश्वास घट्दै गएको चेतावनी दिएको छ। भारतका स्थायी प्रतिनिधि पी हरिशले संयुक्त राष्ट्र संघमा बहुपक्षीयतालाई भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउने विषयक मन्त्री स्तरीय बैठकमा सुरक्षा परिषद चलिरहेको द्वन्द्वमा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न असफल भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। उहाँले 80 वर्ष पुरानो संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना अब वर्तमान विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। आज स्किल इण्डिया मिशनको 11 वार्षिकोत्सव मनाइन्दैछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2015 शुरू गर्नुभएको यो मिशनको उद्देश्य युवाहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र दिगो जीविकोपार्जनका लागि उद्योग सान्दर्भिक सीपहरू प्रदान गर्नु थियो। हाम्रो संवाददाताबाट थप रिपोर्ट।
2: कौशल विकास केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय मौसम विभागले आज ओडिशामा भारीदेखि अति भारी वर्षाको चेतावनी जारी गरेको छ। भोलिसम्म उत्तर पूर्वी भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डका केही भागहरूमा पनि भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। मौसम विभागका अनुसार भोलिसम्म दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ, पंजाब, रायलसीमा र उत्तर प्रदेशमा तातो मौसम रहने अनुमान गरिएको छ। फिफा विश्वकप फुटबलमा आज राति अमेरिकाको एटलान्टा स्टेडियममा अर्जेन्टिनाले दोस्रो सेमीफाइनलमा इंग्ल्याण्डको सामना गर्नेछ। खेल भारतीय समय अनुसार बिहान 12:30 बजे शुरू हुनेछ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, मोबाइल फोन निर्माण योजना, दुई बहुट्याकिङ परियोजनाहरू, युरियाको लागि राष्ट्रिय लगानी नीति

0: लैदियो स्वीकृति भारत र बेलायत बीच आजदेखि व्यापक आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता भयो लागू आज स्किल इण्डिया मिशनको 11 औं वार्षिकोत्सव मनाइँदै अनि फिफा विश्वकपमा आज राति अर्जेन्टिना र इङ्ल्याण्ड बीच खेल आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।
1: श्रोता हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौं कार्यक्रम हेलो श्रोताको रहल भाग लिएर त आउनुहोस् कुराकानीलाई फेरि पनि अघि बढाउँ यो अर्को कलरसित। हेलो आकाशवाणी गान्तोक।
2: हेलो हेलो आकाशवाणी गान्तोक। पूनम जी को मेरा फिर से सशत नमन।
1: नमन नमन
2: और सुनाइए पूनम जी, और सुनाइए आप क्या
1: हाल हो? सुनाइए पहले अपना नाम सुनाइए।
2: बस मैं तो आपका जाना पहचाना श्रोता बात कर रहा हूँ ठंडी ठंडी हवा क्षेत्र से।
1: राकेश जी।
2: जी जी जी राकेश जी।
1: जी राकेश जी, कल ही मैं मार्केट गई थी।
2: अच्छा
1: एप्पल के सिलसिले में।
2: अच्छा मिल गया था
1: जी? नहीं नहीं नहीं, वो लोग बोले कि अभी तो उधर आपने हिमाचल के एप्पल आए ही नहीं यहाँ पर,
2: बस आने वाले बस। अब
1: मैंने भी बता दिया, यहाँ हिमाचल से फोन आया था।
2: हमने अब आज जो है छिड़काव कर रहे हैं और कलर वाला।
1: जी जी जी।
2: तो एक दो हफ्ते के बाद आ जाएगा फिर आप मार्केट में।
1: दुकान वाले भी ऐसे बता रहे थे अब आ जाएगा एक दो दिन बाद, एक सप्ताह जैसा लगेगा। नहीं तो अभी तो पूरा एप्पल खत्म हो गया है, पता नहीं कौन सा एप्पल है वो भी मुझे मालूम नहीं, थोड़ा महंगा भी है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो वो लोग बता रहे थे कि हिमाचल का एप्पल आने से थोड़ा सस्ता भी दे देंगे और वो अच्छा भी रहेगा बोल रहे थे कल। तो मैंने भी बता दिया हिमाचल में से खबर आया है कि अब लगेगा एक हफ्ता जैसा, क्योंकि
2: एक हफ्ता जरूर लगेगा बिल्कुल,
1: क्योंकि वो लोग 15-16 तारीख से तोड़ने लगेंगे, इसे बोल दिया मैंने भी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला सही बोला, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आ जाएगा सेब आपके यहाँ, फिर खूब खाएगा आप स्टूडियो में।
1: खूब खाएंगे, मार्केट जाकर लाएंगे और हिमाचल का एप्पल है बोल के बोलने से तो और भी राकेश जी ने भेजा है बोलकर खा लेंगे फिर।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने सबसे पहले तो मैंने आपके लिए स्पेशल एप्पल तोड़ के रखे, क्योंकि सबसे पहले आप तक एप्पल पहुंचना चाहिए, बाकी पहुंची चाहे ना पहुंचे लेकिन आप तक एप्पल पहुंचना चाहिए। तब जब अगली बार मैं कॉल करूंगा मैं आपसे पूछूंगा कि आपने हिमाचल की एप्पल खाए कि नहीं खाए।
1: जी जी जी। अच्छा लगा जब भी राकेश जी कॉल करते हैं तो एप्पल के बारे में जानकारी लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अब एप्पल के बारे में जानकारी आपको मिलती जाएगी।
1: जी तो आपने बताया ना एप्पल के लिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा जानकारी है, एप्पल के लिए तो स्नोफॉल होना जरूरी है।
2: जी जी जी जी जी,
1: ऐसे जानकारी मिलते रहते हैं हमारे कार्यक्रम में है ऐसा ही, भारत के विभिन्न प्रांतों से फोन आते हैं, वहाँ का रहन सहन खान पीन के बारे में पता चल जाता है।
2: खान पीन के बारे में अलग अलग जो अलग अलग क्षेत्र की भाषा बोली और अपना जो है रहन सहन और कौन से राज्य में कितनी गर्मी होती है, कौन से राज्य में कितनी सर्दी होती है, ये सब पता चल जाता है।
1: यही खास है। तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए
2: आज? मुझे गाना सुनना है जैसे कि अब बरसात का मौसम भी आने वाला, तो गाने की बोले सावन आया बादल छाए, ये गाना सुनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
1: धन्यवाद।
2: तो पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली हैं, मांगी लाल चंदेल हैं, भगवान सिंह परमार हैं, अशस तारा से महाराष्ट्र से तनुश्री हैं, के लिए गाना डेडिकेट रहेगा। और मथुरा से है शारदा प्रसाद प्रजापति और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के साथ में ये गाना सुनना चाहूंगा।
1: जी जी जी, धन्यवाद राकेश जी।
2: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो आकाश विनिकांतो।
1: हेलो आकाश प्राणी जीवितोक, नमस्कार
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: जी। पूनम जी, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ।
0: ओ सूर्यवंशी जी,
1: जी। आपके इधर मौसम कैसा है? मैम इधर बहुत गर्मी है।
0: ओ गर्मी है ना वहाँ पर? यहाँ पर तो उतना
1: हाँ
0: गर्मी तो नहीं है। वही
1: अच्छा,
0: पे मध्य प्रदेश से है आप भी, और मांगीलाल जी भी मध्य प्रदेश से है। वो भी बता रहे थे कि बारिश नहीं हो रहा है।
1: बारिश तो लंबा ड्राई वेदर हो गया, लंबा चल गया, मानसून ब्रेक कंडीशन में लंबा हो गया।
0: ओ मतलब आप लोग के, उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो 52 जिले है ना,
1: हाँ,
0: मतलब अभी किसी जिले में भी पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा
1: मैं
0: है।
1: पूरा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश ड्राई हो गया मैम।
0: एक दो दिन पहले तो नहीं, हम लोग ने समाचार में देखा था, टीवी पे देखा था कि बहुत बाढ़ भी आ गई कई जगह पर।
1: हाँ मैं बताना चाहूंगा, 1 जुलाई से लेके 8-9 जुलाई के बीच हवाई मचा दी थी पानी की।
0: हाँ उतना बारिश हो गया ना उस टाइम में फिर।
1: हाँ फिर कुछ कुछ कुछ जिले बचे हुए थे उसमें भी इतना पानी नहीं गिरा। बाकी निचले हिस्से में जैसे मांगीलाल जी है उधर गुना, उधर नीचे नीचे इलाकों में ज्यादा पानी, भोपाल से नीचे नीचे।
0: तब तो फिर आप लोग के यहाँ पर पानी नहीं होने से भी समस्या हो रहा है।
1: बारिश तो होना चाहिए मैं।
0: बारिश भी बाप रे ऐसा हो जाता है कि फिर बाढ़ आ जाता है, वो फसल ही बगा कर ले जाते हैं, तो क्या करे वो बारिश।
1: फसल बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है
0: ऐसा है ना,
1: जी
0: क्या
1: मैम।
0: क्या करे अब, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से पानी भेज दीजिए।
1: आपके रेडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में 25 तारीख के पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा, जो एक 19 तारीख को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने जा रहा है। तो मानसून रही वाले इलाकों के लिए वो ऊपर आएगी मैम।
0: ये तो अच्छी बात है।
1: आज इसकी वजह से आसपास के सभी देशों में थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा बारिश होगा, फिर मानसून सक्रिय होगा।
0: जी, थोड़ा सा जानकारी भी दे दिया, अच्छा लगा। तो बताइए गाना कौन सा सुनाए आज?
1: जी मुझे जुड़वा मूवी का गाना सुनना, मुझको पसंद है तो सज्जा वो वाला गाना सुनना था। जी
0: तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा, ये गाना।
1: हाँ ये बहुत अच्छा सॉन्ग है मैम। कुछ मित्रों के नाम ले लूँ मैम?
0: जरूर जरूर।
1: हमारे बड़े भाई साहब है, मांगीलाल चंदेल है, दलपत सिंह कंसर है, और अनुप भट्टाचार्य जी है, अविनाश जी है, और सतीश है, जितने भी सुनने वाले सबसे गाना डेडिकेट करेगा।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं कलाहांडी ओडिशा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ।
0: ओ मनोज जी।
1: जी जी,
0: मनोज जी तो गुम ही हो गए। मनोज जी के बारे में क्या शादी के लिए पूछ गया था, मतलब आपका शादी कैसे हुआ था बोलकर पूछा था, आप तो गायब।

0: बिल्कुल
1: मतलब आपके यहाँ पर ना लड़का लड़की देख कर ही लेते हैं कि बाद में शादी के बाद देखते हैं?
0: हाँ, पहले तो घर वाले जाते हैं, फिर देखने जाते हैं।
1: वो लोग ही देख कर आते हैं, फिर शादी के बाद ही देखते हैं ना?
0: नहीं, आगे देखने जाते हैं फिर शादी करते हैं।
1: अच्छा लगा, फिर भी मनोज जी शर्माते शर्माते भी हमारे कार्यक्रम में समय निकाल कर करते हैं, ये अच्छा लगता है।
0: जी, आपका फोन प्रोग्राम में तो बहुत बिजी हो जाता है तो फोन नहीं लगता है। जी
1: फोन नहीं लगता है ना? हम्म,
0: जी जी
1: कभी कभी लगता है।
0: हाँ, कभी कभी लग जाता है।
1: जी, अच्छा लगा मनोज जी से बहुत दिनों बाद बात किया। तो बताइए गाना कौन सा सुना है आज?
0: हम साथ साथ है फिल्म का कोई भी गाना सुना दो। और मैं दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ, श्रीकांत जी और चित्रकोन जी और मंगेलाल जी और मेरा बेटा बेटी और बीवी को।
1: अरे बाप रे।
0: रखता
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद।
0: हूँ, नमस्कार।

0: श्रोता तपाईले सुनिरहनु भएको छ यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता। यदि तपाईले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेलो श्रोतामा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 03592201171 मा कल गरेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् फेरि पनि कुरा गरौं अर्को कलरसित। हेलो आकाशवाणी गान्तोक।
1: हेलो दिदी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: हीराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान जी नमस्कार।
1: और आज दीदी कॉल मिली गया एक महीने बाद।
0: मिल गया
1: जी। एक महीने के बाद ही मिलता है दीदी, इससे पहले नहीं मिलता है।
0: फोन को भी पता चल गया अब एक एक महीना में लगना है खाली।
1: जी जी दीदी, और प्रयास तो दीदी हर हफ्ते करता हूँ लेकिन मिलता नहीं है।
0: मिलता नहीं है, मतलब अभी तो क्या है कि बहुत सारे नया नया कॉलर्स जुड़ गए हैं कार्यक्रम में।
1: जी बहुत ज्यादा दीदी, सभी पूरे भारत में आपको सुना जाता है और डीटीएच के माध्यम से आता है ना दीदी, तो बहुत सारे आपको सुनते हैं, लाखों श्रोता सुनते हैं आपको।
0: जी, इसीलिए वो मतलब जितने के पास नंबर है तो वो लोग भी पूरा ट्राई करने बैठ जाते हैं। सब मतलब ऐसा है ना, सब लोग एक ही टाइम में बैठ जाते हैं तो फोन मिलना मुश्किल पड़ जाता है।
1: दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र 2% लोगों के कॉल मिलते हैं दीदी, बाकी 98% लोग आपको सुनते हैं, मिलाते हैं लेकिन मिलता नहीं है उनका।
0: जी मगर आप लोग का मानना पड़ेगा कि मेहनत, आप लोग हार नहीं मानते फिर भी कर लेते ना।
1: जी दीदी, हम हार नहीं मानते, हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं दीदी। मैं हर आकाशवाणी पे कॉल मिलाता हूँ दीदी, इसलिए मिल भी जाता है।
0: सभी जितने भी हमारे कॉलर है सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। मतलब क्या है कि इस सप्ताह नहीं लगने से फिर दूसरे सप्ताह वो लोग ट्राई करते हैं, उसमें भी नहीं लगते, फिर अगले सप्ताह करते हैं, तो इसे ये तो आप लोग का प्यार है हमारे कार्यक्रम के लिए।
1: जी जी दीदी, और कार्यक्रम तो मैं दीदी कभी भी मिस नहीं करता, हमेशा सुनता हूँ।

0: और मेरे दोस्तों का अगर कॉल लगता है और उनके रिकॉर्डिंग करके उनके पास उगा देता हूँ, कोई नहीं सुन पाता है। तो दीदी
1: जी जी जी ये अच्छी बात है जी, अच्छा लगा एक महीने बाद फोन किया भगवान जी ने। तो बताइए गाना कौन सा सुना
0: है
1: आज?
0: दीदी फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम और गाने के बोल है ये चांद कोई दीवाना है। और दीदी कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे? पहले तो है राकेश जी है, पूरन वर्मा जी है, आशुतोष जी, अविनाश जी है, पूनम दीदी है कानपुर से, धीरज भाई रवाड़ी जी, लोकेन्द्र वर्मा जी है, और हमारे बहुत सारे मित्र है तनुश्री बिटिया है महाराष्ट्र से, और जिनका नाम मैं भूल गया हूँ दीदी उनको अगले हफ्ते ले लूंगा, गजराज लोधी जी हैं
1: जी जी जी,
0: एस एस सिंह राजपूत जी हैं
1: जी, सभी के लिए
0: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो आकाश वनिगंतो।
1: हाँ जी, योगेश झांगड़े जी, मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश झांगड़े जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: छत्तीसगढ़ से?
1: हाँ जी
0: जी। योगेश झांगड़े जी भी मुझे लगता है कि बहुत शर्माते हैं आप भी हमारे मनोज कुमार जी जैसे
1: बचपन से थोड़ा सा स्वभाव इसी तरह से है
0: लग रहा है आपकी बातचीत से
1: जी
0: बहुत शर्माते होंगे
1: जी।
0: शादी हो गई कि आपका?
1: हाँ जी, हो गया है।
0: उस टाइम में भी बहुत शर्माया होगा ना लड़की देखने के जाने के लिए भी नहीं किसी किसी का होता है ऐसे स्वभाव, खाली लड़की लोग ही शर्माना नहीं है, लड़का लोग भी तो शर्मा सकते हैं ना।
1: और थोड़े से जो ऐसे सुना हूँ बोलते हैं साथी लोग, जो थोड़े से शर्माते हैं वो काफी शरीफ होते हैं।
0: मतलब ये सुना हूँ नहीं, आप खुद ही शरीफ ही होंगे
1: जी जी जी
0: है कि नहीं, आप शरीफ है कि नहीं?
1: हाँ जी
0: शरीफ है
1: जी
0: शर्माते हमारे कार्यक्रम में कॉल कर गए, इसी ये बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, रेडियो में फोन करने के मामले में तो बिल्कुल झिझक नहीं लगता,
0: शर्म नहीं लगता
1: और लगातार जुड़ते रहते हैं
0: जी जी जी जी
1: जी
0: ये अच्छा लगता है। मगर हमारे कार्यक्रम में जितना भी कॉल करते हैं ना, कोई कोई लोग बहुत शर्माते हैं फिर भी कार्यक्रम में कॉल करते हैं, शर्माते शर्माते आप जैसे ये अच्छा लगता है
1: जी।
0: योगेश जी सब ठीक होंगे ना?
1: हाँ जी, बाकी सब ठीक है
0: जी। बताइए तो फिर गाना कौन सा सुनाए?
1: फिल्म धर्मात्मा से सुनवा देंगे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
0: ये तो अब घर में भाभी जी को बोलिए
1: जी, ठीक है ना, प्रोग्राम साथ में सुनेंगे
0: जी। किस किस को सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथियों को,
0: सभी को, और स्पेशली विशेष करके भाभी जी को।
1: हाँ जी, रंजीता झांगरे,
0: रंजीता जी को विशेष करके, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो जी जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो
0: केंद्र।
2: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
2: मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, जिला कलाहंडी भैया भवानी पटना, गांव का नाम जगतनाथपुर, नाम चित्र सिंह सवा।
0: चित्र सिंह जी
2: हाँ, और आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपका दोस्त ने फोन किया था।
2: हाँ जी, मनोज पटेल।
0: मनोज पटेल
2: जी,
0: आज तो दोनों दोस्त का फोन लगाया। बिजी थे क्या चित्र सिंह जी? बहुत हल्ला है।
2: नहीं जी, घर में हूँ।
0: जी जी जी, फिर भी टीवी चलाए हुए हैं।
2: हाँ जी,
0: ये बहुत हल्ला चल रहा है। जी जी, चित्र सिंह जी ने बहुत दिनों बाद कॉल किया, अच्छा लगा। तो बताइए गाना कौन सा सुनाए?
2: गाना सुनेंगे, मैंने प्यार किया, जो भी गाना सुना दीजिए।
0: मैंने प्यार किया ऐसे कोई भी?
2: पहले तो आपको बहुत दिन से आपको डेडिकेट नहीं किया ना।
0: ओ, जी जी।
2: और मेरा दोस्त मनोज पटेल, क्षमा सागर साहू और नागू पात्र, श्रीकांत जोशी, मंगेलाल जी। हाँ जी
0: जी जी, धन्यवाद चित्र।
2: धन्यवाद जी, रहते हूँ। नमस्ते, जय जगत।

0: हितिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम हेलो श्रोता, जसको निर्धारित समय यही पूरा हुँदछ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: यो सुन्नुहोस् एक सूचना, आकाशवाणी गान्तोक सोसियल मीडिया म्यानेजमेन्टको लागि यंग डाइनेमिक र क्रिएटिभ इन्डिभिजुअल्सबाट सामयिक अर्थात क्याजुअल ब्रडकास्ट एसिस्टेन्टको लागि आवेदनको आमन्त्रण गर्दछ। शैक्षिक योग्यता कुनै पनि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएट हुनपर्छ। यसको साथै मास कम्युनिकेशन, जर्नलिजम, सोसियल मीडिया म्यानेजमेन्ट, भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी साथै डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएशनमा दक्षता हुन आवश्यक छ। योग्य इच्छुक उम्मेद्वारहरूले सम्पूर्ण आवश्यक प्रमाण पत्रहरूको प्रतिलिपिसितै बायोडेटा अनि भर्खरै खिचेको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफसित आफ्नो आवेदन आकाशवाणी गान्तोकमा आगामी 10 अगस्त 2026 बुझाउन पर्नेछ। आवेदन इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो मेल आईडी छ phairgantok@gmail.com।
0: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम गीत गजल। सर्वप्रथम कार्यक्रमको प्रतीक्षा साचेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामाझ हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जनाउँदै प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौ कलाकार नितिन मुकेश अनि नुसरत फतेह अली खानको आवाजमा केही गीतहरू।

0: यो कार्यक्रम गीत गजल अन्तर्गत गायक कलाकार नितिन मुकेश अनि नुसरत फतेह अली खानको मधुर आवाजमा गीतहरू आज भने गीत गजलको निर्धारित समय यही पूरा हुँदछ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट

0: एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमरीका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनवीटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
1: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहां के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
2: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना

0: कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रूपये के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात

0: निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है, लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया।
2: नमस्कार।
0: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्राजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्राजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पेटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे, और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है, हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
0: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कॉम्पोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान

0: होगी।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब यह है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या दलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझने चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर, वो घट के 0 हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है, उसमें 0 हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है, उसमें 18% था, उसमें 0 हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें 18% है, 0 हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था, उसमें 0 हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था, उसमें भी 0 हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स उसमें 8% था, उसमें भी 0 हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा कि हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूं बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है, इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने का डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं, इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह, दोनों जगह टैक्स कटते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहां पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज जो देखते हुए मैं समझता हूं कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो कंट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफडीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च

0: आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कम्पेटिटिव है तो और ज्यादा कम्पेटिटिव बनेगी, हम भी एक कम्पिटिशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कम्पिटिशन होगा जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
0: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की, उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है। उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो एफटीएस जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूं ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
0: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
1: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की, कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारे आईटी सर्विसेज

0: तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं समझता हूं कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर ली हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहां पे जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था उसमें काफी एक धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, यू को मिला के मैं कह रहा हूं, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट एडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
0: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही है, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है और ऑटो कंपोनेंट्स,

0: टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज्यादातर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमईज के हित हैं, उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की, और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
2: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीजों में, सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती है, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये सर्ज हर जगह मैं समझता हूं कि जो नौकरी की जो अवसर होती है वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनी फोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट

0: करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इम्प्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्किल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में इस समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। यह 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया, थैंक
3: यू, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है